सुहाती, और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है। ताते उपजत है उर दाहू, और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्ता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तब विषय में रुचि कैसे होगी।

बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए, रस बल छूटे जो विषय रस तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है, और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती, और कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का, और मैं कहूँगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है? जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है? ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है, और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है उस स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात में समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया, वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ही स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी, इसलिए काल चुरैया चुग रही। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी, व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए की लाज नहीं भइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है, माथे पर ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है। सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूँ, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम ना आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूँ शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूँ कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है। राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई, मन लागो अति झूठ सो तज साच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा। कितना क्षण भंगुर ये देह है,

झिले ना झिले, इसीलिए कहा है हरि का नाम रटले री रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो समय पर करो मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगा कर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूँ कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में, सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
1: ये
0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
1: ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: बहुत कॉमन हो गए हैं।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: नमस्कार, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बी के ज्योति जी एंड बी के प्रिया जी। वेलकम मैम।
2: थैंक यू
0: ज्योति जी। एक फेलियर के बाद मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कैसे डेवलप होते हैं और इनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल के जो बच्चे हैं या हम देखते हैं बहुत सी यूथ भी है, वो इन सब चीजों से जूझ भी रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक बार का फेलियर होना नहीं है, उसके साथ साथ जो लोग उनको रिस्पॉन्स करते हैं। कई बार फेलियर होने पर, एक बार फेल हो गए तो लोग भी उनको डिमोटिवेट करने लग जाते हैं कि आप तो सफल हो ही नहीं सकते हो, आप क्यों कोशिश करते हो। कुछ लोग पहले से भी उनको रोक रहे होते हैं और वो फिर भी वो कार्य करते हैं तो और निग्लेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति का अपने ऊपर से विश्वास उठने लग जाता है और वो खुद भी नेगेटिविटी में। और हम आजकल चारों तरफ देखते हैं, जो भी हमारे आसपास में चीजें मिल रही हैं या लोग मिल रहे हैं वो नेगेटिव ही बातें करने वाले हैं।
0: बिल्कुल।
2: जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर किसी पेशेंट से कोई मिलने जाता है तो उसके पास जाकर के वहां पर उसको बल देने के बजाय कई लोग ऐसी बातें करते हैं, फलाने को ऐसी बीमारी हुई थी, वो उसकी डेथ हो गई, उसके घर में ऐसा हो गया, तो व्यक्ति को डरा देते हैं। आज किसी के पास मोटिवेट करने वाले शब्द नहीं है, इसीलिए आज जब कोई बच्चा फेलियर होता है या किसी भी कारण से किसी जगह पर रह जाता है तो उसके आसपास के लोगों का सपोर्ट अगर उसे नहीं मिलता है, आसपास के लोग भी उसको नेगेटिव ही रिएक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे उसका माइंड भी नेगेटिविटी में चला जाता है। वो खुद पर भी फेथ नहीं करता, लोग भी उसको वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका एक पैटर्न बन जाता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन अगर कहीं भी ऐसे व्यक्ति को अगर एक भी सपोर्ट एक ऐसा मिलता है और इसके लिए अगर व्यक्ति निकलना चाहता है तो सबसे पहले तो खुद खुद का सपोर्टर बनना है।
0: सही बात है
2: कि कोई भी असफलता हमें सदा के लिए असफलता नहीं दिलाती, उसके लिए हमें जरूरत है कि रोज अपने आप में कुछ क्वालिटीज, अपने आप में कुछ विश्वास रखें। आज कहीं भी देखें तो हम जैसे ब्रह्मा कुमारीज में है तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कई बार हम फेथ की बात करते हैं और हम पूछते हैं आपको भगवान पे फेथ है, तो लोग कहते हैं यस हमें भगवान पे फेथ है।
0: बिल्कुल।
2: आपको फैमिली पे फेथ है, यस हमें फैमिली पे फेथ है। लेकिन जैसे कहते हैं आपको अपने ऊपर फेथ है तो कहते हैं नहीं हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। माना कहीं ना कहीं खुद खुद से ही दोस्ती नहीं है, खुद खुद के लिए ही पॉजिटिव नहीं है
0: जी।
2: तो जब हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो लोग भी हमें उसी नजरिए से देखते हैं और हमेशा ही पीछे करना चाहेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे पहले के जमाने में लोग होते थे तो वो लोग अगर किसी को ये कहते थे कि तुम सफल नहीं हो सकते, लेकिन व्यक्ति के अंदर खुद की इतनी विल पावर होती थी, नहीं हम सफल होकर दिखाएंगे, वो उसी पैटर्न से चलते थे और बहुत सक्सेसफुल भी होते थे। और ये जितने भी हमने साइंटिस्ट देखे हैं इनकी हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो यही हमें मिलता है कि उनको सबने निग्लेक्ट किया लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर से अपने आप को सफलता के शिखर पर लेकर गए। लेकिन आज का जो जनरेशन है या आज के जो लोगों की मेंटालिटी बन गई है, जिसमें हम सब भी शामिल हो जाते हैं कभी कभी, कि अक्सर हम यही सोचते हैं कि नहीं फेलियर माना ही फेलियर, अब हम आगे सक्सेस नहीं हो सकते हैं, हमारे अंदर पावर नहीं है। और कहीं ना कहीं सच में ही उनकी इनर पावर बिल्कुल वीक हो चुकी है क्योंकि कहीं पॉजिटिव बातें मिल ही नहीं रही हैं, कहीं कोई मोटिवेट कर ही नहीं रहा है,
0: बिल्कुल
2: कहीं से उनको एप्रिशिएशन नहीं मिल रही है। आज इसकी बहुत कमी हो गई है, इसी कारण से आज व्यक्ति के माइंड में जो है वो नेगेटिव पैटर्न बनता जा रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है और वो एक बार फेलियर को भी अपने जीवन के फेलियर में शामिल कर लेता है।
0: बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ एक सोच नहीं, कभी कभी हमारी आदत भी बन जाते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सोशल मीडिया और कंपैरिजन ट्रैप किस तरह हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं। बने रहिए नया नजरिया के साथ।

0: सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

Venom, please.

जाके बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई तो करी रिस्टार्ट।

किसी के लिए सेलिब्रेशन, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है। तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @ रेडियो महारानी 89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: प्रिया जी, सोशल मीडिया पर किसी और की सक्सेस देखते ही कई लोग अपनी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स को उसी वक्त कैसे ब्रेक किया जा सकता है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
2: जी, बहुत अपने बहुत अच्छी बात कही है जो आज की डेट में बिल्कुल सब पे ये लागू होती है। और मैं तो कहूँ सिर्फ यंग पे नहीं, इनफैक्ट जो बच्चे हैं,
0: बिल्कुल
2: इनफैक्ट जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन पर भी ये बात कहीं ना कहीं लागू होने लग गई है।
0: जी,
2: वो भी कंपेयर करने लगे हैं कि हमने अपनी उम्र में नहीं किया, देखो ये कर पा रहे हैं। तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या अपने को डीमोटिवेट कर रहे हैं, वो तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर कोई कंपेयर जरूर कर रहा है और हम सब जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। पर उसी दौरान मुझे इस थॉट पैटर्न को रोकना है, ब्रेक करना है, स्लो करना है, जो भी है वो मुझे ही करना है।
0: जी,
2: तो मेरा मानना ये है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपना जो भी सक्सेस है या व्हाटएवर है वो डाल रहा है, तो ये बात याद रखिएगा कि दुनिया में जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा, जिनकी हम बात करें, जो आए दिन अखबारों में है, न्यूज में है, मीडिया में है, जो खुद नहीं डालते लेकिन मीडिया डाल रही है, वो अपनी सक्सेस को कभी भी सोशल मीडिया पे खुद नहीं डालते।
0: बिल्कुल,
2: ये चीज आप खुद पे डाल कर देखिए कि हमें अपनी सक्सेस क्यों डालनी है या हम कुछ भी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे क्यों डालना है।
0: बिल्कुल।
2: और आज की डेट में तो देखा गया है कि जो डाल रहा है, जो घूमने गया है व्यक्ति, अभी हाल ही में न्यूज आई कि व्यक्ति घूमने गया है, पूरी फैमिली की फोटो अपलोड की है और वहीं से उनके घर में चोरी हो गई, क्योंकि फेसबुक से या जो भी वो है प्लेटफॉर्म है, वहां से वो न्यूज जो है वो लीक हुई है और ये सारी चीजें हो रही हैं। और अगर मैं अपनी सक्सेस का डालता हूँ कि भाई मुझे ये अवार्ड मिला है, तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसकी सक्सेस को देख करके अगर डीमोटिवेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही डीमोटिवेट हो रही हूँ, तो मैं अपने आप को डीमोटिवेट क्यों कर रही हूँ? मैं उसे देख करके मोटिवेट क्यों नहीं हो रही हूँ? ये मुझे अपने आप से पूछना चाहिए कि जब वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल सही बात है।
2: वो अपने फील्ड में अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मैं उस फील्ड में नहीं बढ़ सकता, वो मछली, मैं तैर नहीं सकता, मैं मछली से रेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने फील्ड में क्यों नहीं अपलिफ्ट करूं अपने आप को, आगे बढ़ाऊं अपने आप को? इस तरह के थॉट पैटर्न भी तो हम ला सकते हैं, ये मेरे ही हाथ में है। और अगर हम चाहे कितने ही किसी के स्पीचेस सुन ले, लेकिन अल्टीमेटली उस पॉइंट पे मुझे अपने आप को ही मोटिवेट करना है, अपने आप को ही वो थॉट पैटर्न देने हैं कि ये अगर मैं देख रहा हूँ तो इससे मुझे अपने आप को, अगर मैं उसे देख रहा हूँ तो मुझे अपने आप को चैप्टर देना है।
0: बिल्कुल।
2: कि मुझे भी आगे बढ़ना है, और जरूरी नहीं है कि मुझे आगे बढ़कर सेम प्लेटफॉर्म पे अपने आप को भी अपलोड करना है ताकि चार लोग देख सकें।
0: बिल्कुल।
2: नो नीड, ये जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो खुद अपलोड नहीं हो रहा है, उसे दुनिया अपलोड करती है।
0: बिल्कुल।
2: इसीलिए अपने आप को अपलोड करने में उस पे में मत रहिए कि सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहा है, एनर्जी अपलोड कीजिए, मोटिवेशन अपलोड कीजिए, और फिर उसके बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आपको अपलोड करेगी।
0: कंपैरिजन ट्रैप कब मोटिवेशन से प्रेशर बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे उन थॉट्स की जो रात भर हमें सोने नहीं देते। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

रंदी कैरी खाई में लगा दी मैंने टाई वावे खोलो ना तुम दरवाजा पर आया नहीं रिप्लाई और जो फ्रस्ट्रेशन में बोला आज वो बन गया मेरा स्टाइल फिर दिल की आवाज सुनी सबने बिना कोई माइक नाउ आई एम रेडी फॉर द फ्लाइट एंड आई एम रेडी फॉर द फाइट सारे कमेंट्स सारे

0: एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: ज्योति जी, कई लोग रात को सोने जाते हैं लेकिन उनका माइंड पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन और व्हाट इफ वाले थॉट से भरा होता है। ऐसे वक्त में दिमाग को शांत करने का सबसे इफेक्टिव स्पिरिचुअल तरीका क्या हो सकता है?
2: एक्चुअल में देखा जाए तो इस प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन ही मेडिटेशन है।
0: जी,
2: कि आप अगर मेडिटेशन का मतलब सिर्फ क्या है, मेंटल अटेंशन,
0: बिल्कुल
2: मन की जो विचारधारा है उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि आज की डेट में हमें सब लोग ये तो कहते हैं कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या सोचना चाहिए ये कोई नहीं बताता है कि हमें ऐसे समय पे क्या सोचना पड़े। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर भी, मेरे साथ कोई चीट किया है किसी ने या कोई ऐसी बात हुई है, तो उस कंडीशन में हम जो कि मेडिटेशन करते हैं जब, तो हम अपने आप को एक थॉट देते हैं कि जिसने मुझे चीट किया वो उसकी अपनी नेचर थी, मेरी नेचर क्या है, मुझे उसके हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और शायद कभी किसी समय का मेरा उसके साथ कोई हिसाब किताब रहा होगा। तो मेडिटेशन की ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको हम अपने माइंड में लेकर चलते हैं, लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट मेथड है वो है कि सुबह सुबह उठकर पहले आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे, पॉजिटिव बात करें अपने लिए कि किसी के भी हाथ की आप कहीं कठपुतली तो नहीं बनते जा रहे
0: हैं। तो
2: अपने लिए पहले खुद को चेक करना है कि मेरी खुशी किसी पे डिपेंड तो नहीं है, मेरी सक्सेस किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी साधनों पे तो डिपेंडेबल नहीं है। अगर हम डिपेंड होके चल रहे हैं तो मेरी खुशी वो टेम्परेरी रहेगी, मेरी सक्सेस भी वो टेम्परेरी रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: और अगर हम इनर पावर से बहुत पावरफुल है, बहुत अपने आप को स्ट्रांग करके चल रहे हैं, तो हमें आगे सफलता मिलेगी। जैसे अगर मुझे ऊंचाई पर चढ़ना है, मेरे को आगे जाना है, लोगों ने क्या सोच रखा है वो उनकी सोच है, मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे सामने बहुत सारे बैरियर्स तो आएंगे।
0: बिल्कुल।
2: अगर मुझे एक अच्छा दौड़ने वाला बनना है तो बैरियर तो क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर हम बैरियर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वहां पर फिर हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो बैरियर को अपने आप में एक चैलेंज समझ के अगर चलते हैं और सुबह सुबह उठ करके अपने आप को ये कहें, मैं सदा सफल हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे सिर पर परमात्मा का हाथ है, मैं जो भी कार्य करता हूँ वो सफलता मिलती है उसमें, पहले खुद को ये थॉट देना है, तब हम लोगों के साथ वो चीज डील कर पाते हैं। अक्सर होता क्या है, हम बहुत पॉजिटिव होकर चलते हैं लेकिन लोग हमें नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। जैसे इसकी एक स्टोरी सुनाऊं तो एक बार एक संत थे और वो संत जब स्नान कर रहे थे पानी में, तो उनके हाथ में उन्होंने देखा एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है। उन्होंने उसको उठाया और उसको किनारे पर रखने के लिए ले जाने लगे तो बिच्छू ने उनको डंक मार दिया, फिर उनके हाथ से वो गिर गया, वो फिर उठाया उन्होंने और फिर उठाने के बाद फिर जो है वो वापस ले जा करके रखने लगे। तो बार बार ये प्रोसेस, उनके ऊपर जहर चढ़ रहा है। अब कुछ लोग जो बाहर खड़े थे वो लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बिच्छू आप इसके साथ क्यों आप उसको उठा रहे हैं, वो आपको बार बार डंक मार रहा है और आप पे बहुत ज्यादा जहर चढ़ रहा है, आप ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जो आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है उसके साथ, लेकिन फिर भी आप उसको क्यों उसको बार बार उठा रहे हैं। कहा मैं इसे बचाना चाहता हूँ। बोले लेकिन ये तो आपको मार रहा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वैसे दुनिया में लोग कहेंगे प्रैक्टिकल होना मुश्किल है, लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है।
0: बिल्कुल।
2: उन्होंने कहा कि ये बिच्छू है और इसकी प्रवृत्ति जो है वो डंक मारने की है, ये मरते मरते भी अपनी उस आदत को नहीं छोड़ रहा है, मरते मरते भी वो डंक मार रहा है। तो मैं एक संत हो करके मेरी प्रवृत्ति बचाने की है, तो क्या मैं मरने के डर से अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ दूं? माने वो बिच्छू एक जीव हो करके वो भी अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा, उसे पता है मैं मर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है। और मैं एक संत हूँ, एक महात्मा हूँ, मेरी इतनी ऊंची, मैं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनता हूँ, तो क्या मैं मरने के डर से अपनी इस नेचर को छोड़ दूँ? तो ये भी चीज हमें बहुत कुछ सिखाती है।
0: बिल्कुल।
2: स्टोरीज हमें बहुत कुछ जीवन में अप्लाई करना सिखलाती है कि लोगों ने हमें कुछ भी नेगेटिव भी बोलेंगे, निगलेक्ट भी करेंगे, लेकिन मुझे अपनी सोच को, मुझे अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है जो दूसरों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो।
3: बिल्कुल।
2: और इसके लिए हमें थोड़ा सा किसी पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना या कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जरूर जिनसे आपको कुछ पॉजिटिव चीजें मिल सकें। ऐसे में आप टाइम देंगे तो आपको हर जगह पर हेल्प मिलेगी। और मेडिटेशन में तो आप 15 मिनट भी अगर अपने साथ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देते हैं और परमात्मा से कुछ पल के लिए अपने मन की बातें करते हैं तो आपको वो बहुत बहुत हील करता है।
0: हम सब कभी ना कभी ऐसे थॉट्स का सामना जरूर करते हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलना भी मुमकिन है। ब्रेक के बाद आज का सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल सवाल लेकर लौटेंगे। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नया नजरिया ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: प्रिया जी, अगर कोई पर्सन हर सिचुएशन में पहले नेगेटिव ही सोचता है, तो वो आज से ऐसी कौन सी सिंपल हैबिट्स शुरू करे जिससे धीरे धीरे उसकी थिंकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलने लगे?
2: तो बिल्कुल। तो फिर अगर मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं कहीं भी कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट थॉट मेरा नेगेटिव होता है, उसके बाद धीरे धीरे अगर मैं अपने आप को रिकवर कर लेता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेक इट अ हैबिट कि मैं जब भी कुछ ऐसा मेरे साथ होने लगे कि थॉट आ रहा है, तो हम ये हमेशा याद रखें कि सब कुछ अच्छा है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा।
0: बिल्कुल।
2: ये चीज आप जितना लिखेंगे तो ये चीज प्रैक्टिकली आपके साथ होने भी लगेगा। ये होता ही है कि अगर आप 21 बार लिखते हैं दिन में, तो वो चीज आपके जहन में जाने लगती है, और जब वो जहन में जाती है, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट, नेचर, बिहेवियर एंड देन हैबिट के साथ साथ आपका डेस्टिनी में भी आने लगती है।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो ये लाइन आप जरूर लिखें कि सब कुछ अच्छा है और मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, तो आप वाकई में देखेंगे सब अच्छा हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने 3 लाइन बोली है, तो एक कहानी मैं भी सुनाना चाहूंगी। तो एक बार बीरबल के साथ अकबर ने बात करी, तो अकबर जी ने कहा कि क्या ऐसी बात हो सकती है दुनिया में जो कि जब भी पढ़ी जाए तो अपने आप को हम सहज कर सके, या फिर जो भी सिचुएशन में उसे हम अपने आप को निकाल सके। अगर मैं बहुत खुश हूँ तो भी नॉर्मल हो जाऊं, या मैं बहुत दुखी हूँ तो भी मैं अपने आप को नॉर्मल कर सकूं, ऐसा कुछ है? तो बीरबल ने उनके आगे लिख करके दिया कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो अगर ये लाइन हम सदा याद रखें कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो अगर नेगेटिव सीन में हूँ तो भी मुझे अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल।
2: और अगर मैं बहुत एक्साजुरेट फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा क्या कहें, ऑन क्लाउड्स या जो भी फील करता हूँ, तो तब भी मेरे पांव धरती पर आ जाएंगे अगर ये लाइन याद रहे कि ये वक्त गुजर जाएगा।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो ये
0: है।
2: दूसरी बात हम अपने जहन में डालें कि ये जो चल रहा है ये सब गुजर रहा है, अगर अच्छा है तो गुजर रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से गुजारे, और अगर नेगेटिव है तो गुजर रहा है, अच्छा है, गुजर जाए। तो ये दूसरी लाइन हम ध्यान रखें। और तीसरा जो है कि मैं कहूँ, थोड़ा सा हम मेडिटेशन करना शुरू करें कि आसपास जितने भी लोग हैं उनको हम इस फीलिंग से देखें कि ये मेरा परिवार है। तो अपने परिवार से कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे चीजें तो होती हैं। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, हम 40s में हैं, आप 20s में हैं, तो हमारी कितनी बार मम्मी पापा से बहस हो जाती है, कई बार डांट पड़ जाती है। तो अगर ऊपर नीचे हो रहा है आसपास, तो ये मेरा परिवार ही है, और परिवार में अगर ऊपर नीचे होता है तो तोड़ा नहीं जाता है, उसको संभाला जाता है, उसे रिपेयर किया जाता है। तो चाहे जापानीज में बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया जाता है जिसमें कोई भी चीज जो टूट जाती है वो उसे फेंकते नहीं है, वो उसे सोने की जो कहें उसे चिना देते हैं, यानी उसे जॉइंट देते हैं, और उसके बाद उस चीज को जोड़ करके वो सदा के लिए सजा देते हैं कि ये मेरे बचपन का यादगार है या समथिंग है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में जब भी कुछ होता है तो हम उसे मेडिटेशन, परमात्मा की याद, अच्छे थॉट्स या कुछ भी इस तरीके की भावना से उसे पुनः जोड़े, हम तोड़े नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पलक के साथ बहुत बुरा एक सीन हुआ
0: जी,
2: जो मेरे सामने है, लेकिन उसको हम जीरो नहीं करें
0: जी,
2: हम उसे एक ऐसे लेवल पे लाके छोड़ दें कि जहाँ मेरी आपसे शत्रुता नहीं रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: मित्रता नहीं है, ओके फाइन, क्योंकि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते तो हैं, लेकिन मेरी शत्रुता नहीं रहे, इस लेवल पर मुझे ला करके उस रिलेशनशिप को सदा रखना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि कीचड़ का पानी भी आग बुझाने के काम तो आता ही है।
0: बी के ज्योति जी और बी के प्रिया जी, थैंक यू सो मच इतनी प्रैक्टिकल और इंस्पायरिंग बातें शेयर करने के लिए।
2: थैंक यू।
0: दोस्तों, याद रखिए, हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन हर पॉजिटिव डिसीजन एक नए थॉट से जरूर शुरू होता है। इसलिए अपने माइंड को वही दीजिए जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। मैं हूं आरजे पलक, आपसे इजाजत लेती हूं। फिर मिलेंगे नया नजरिया के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस और बात करने वाले हैं आज के मौसम के बारे में। देखिए, अगर फरीदाबाद के मौसम की बात करूँ ना, तो कभी भी बदल जाता है, कभी आंधी तूफान और कभी बारिश। तो भाई, आज का मौसम जो है आपका मूड अच्छा करने वाला है, बिकॉज आज है रेन डे, यानी कि बारिश मिलेगी आज आपको पूरा दिन। तो अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करूँ 28 डिग्री रहने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 23 डिग्री है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमिडिटी की, तो वही ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 60%। तो भाई देखिए, सुबह 7 बजे ना बारिश ने आना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे बारिश बढ़ती जाएगी। 8 बजे बारिश होने वाली है 50%, 9 से 10 मिलेगी आपको 60%, और फिर पूरा दिन बारिश के चांसेस है 70%। तो वही आज अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिएगा, अगर घर से बाहर जा रहा है तो रेनकोट भी जरूर लेकर जाएगा। टू व्हीलर पर है तो अपना ज्यादा ख्याल रखिएगा, और साथ ही जब बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो ऐसे में आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके साथ ही एंजॉय कीजिए मौसम विद दिस ट्रैक और मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मैं डॉक्टर ईशा वधावन हूँ, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं फोर्टिस फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन, तो हम लोगों की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बहुत लंबी होती है, बट देर आर ओनली सो मेनी डेज इन अ वीक या फिर सो मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट हम मदर्स, जब कोई भी लेडी मदर बनती है, ट्रूली ब्रेन में स्टडीज हुई हैं कि चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, एक्स्ट्रा लेवल की कंपैशन वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी बार इग्नोर कर देती हैं बाकी सबको हेल्प करते करते। इग्नोर करने में इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। बट बहुत सिंपल और वैलिड पॉइंट ये है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब आप अपना कप भरेंगी पॉजिटिव थिंग्स से तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी करेंगी। अगर आप इतनी फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं कि आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप कुछ हेल्प बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगी अल्टीमेटली।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

अगस्त किसी के लिए हॉलिडे है, किसी के लिए सेलिब्रेशन, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है। तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @ रेडियो महारानी 89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।

उफ, ये तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हमेशा ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। तो वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आयुष जिंदगी इन द हाउस। और बात करने वाले हैं आज तारीख पर, तारीख पर कौन सा खास दिन है। तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं माउंटेन डे। और अगर मैं इस दिन की बात करूँ ना, तो पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में। ये हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा और ये सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। यहाँ से व्यूज तो प्यारे मिलते ही हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स ना छोटी नजर आती है। माउंटेन्स की बात हो ही रही है तो कई लोग ना मेरी तरह माउंटेन पगलू होते हैं। आप भी अगर माउंटेन पगलू है तो चले मैं एक सवाल करती हूँ आपसे, अगर अभी आपको एक फ्री ट्रिप मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे, माउंटेन या फिर बीच? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको पता है ना कहाँ जाना। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर आना है और वहां पर

सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स को हेडफोन्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारापन कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल। इमरान हाशमी का शिवम पंडित एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम था लेकिन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर जाता था। और ऑनेस्टली उस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सेफ्टी से रखा हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद शिवम पंडित फिर से लौट रहा है। आवारापन 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में वही इंटेंस इमरान हाशमी वाइब देखने को मिल रही है, एक्सप्रेशंस वही, साइलेंस वही, लेकिन कहानी इस बार पहले से कहीं ज्यादा लेयर्ड और एक्शन पैक्ड लग रही है। फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल्स में है, तो कास्टिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे बॉलीवुड में सीक्वल बनाना सबसे रिस्की गेम है, क्योंकि ऑडियंस टिकट सिर्फ नई स्टोरी देखने के लिए नहीं खरीदती, वो अपनी पुरानी मेमोरीज भी साथ लेकर आती है। और आवारापन जैसी फिल्म के फैंस की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लग रहा है कि मेकर्स ने सिर्फ नाम कैश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस ओरिजिनल इमोशन को भी पकड़ने की कोशिश की है जिसने पहली फिल्म को कल्ट बनाया था। अब देखना यह है कि आवारापन 2 वही मैजिक रिक्रिएट कर पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कुछ स्टोरीज नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं, अपने इमोशंस की वजह से याद आ जाती है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

हेलो हेलो जी, वेलकम टू दी रेडियो महारानी। दिस इज आज अंशी इन द हाउस और बात कर रहे हैं हम बॉलीवुड बस की। तो आज बॉलीवुड बस में हम बॉलीवुड के सुपरस्टार को बर्थडे विश कर रहे हैं, जिनकी पर्सनालिटी में ही एक अलग स्वैग है। तो आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है सुनील सेट्ठी का। अगर इनकी बात की जाए ना, तो बॉलीवुड में इन्हें एक्शन, कॉमेडी और इमोशनल रोल्स के लिए जाना जाता है। और साथ ही अगर बात की जाए इनकी मूवीज की, तो बलवान से लेकर मोहरा, धड़कन और हेरा फेरी तक आइकॉनिक कैरेक्टर्स आज भी ऑडियंस को याद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुनील सेट्ठी सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। मतलब स्क्रीन पर भी फिट, बिजनेस में भी हिट। तो भाई चलिए इन्हें विश करते हैं, रेडियो महारानी विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे सुनील सेट्ठी जी। सुनील सेट्ठी सर, आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

हाँ जी, चलिए वक्त हो गया है फरीदाबाद से निकल कर देश के दूसरे कोने में जाने का। और आज ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। ये बताने वाली हूँ कि एक शाम में आप दो दो सनसेट विजिट कर सकते हो। भाई देखिए, 12th August यानी कि कल के दिन ना कुछ खास होने वाला है, और ये चीज होने वाली है स्पेन के अंदर। इसका नाम है आबेयानुसा दे मेन्यू विलेज। तो भाई जहाँ पर होने वाला है सनसेट से जस्ट पहले टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि सीधी सी बात ही है, एक्लिप्स की वजह से कुछ देर के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल सनसेट जैसा माहौल बनेगा। और जैसे एक्लिप्स खत्म

हेलो हेलो जी, चलिए फिर बात करते हैं बिजनेस बस की। और अगर मैं बिजनेस बस की बात करूं तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आइडियाज नहीं देती, बल्कि यहाँ पर ये बताती हूँ एक छोटा सा आइडिया किस तरह से एक बड़ा ब्रांड बन गया। आपको उन सभी बिजनेस की स्टोरीज भी सुनाती हूँ और एक छोटी

प्रॉब्लम किस तरह से एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक स्टार्टअप की जिसका नाम है प्लेंटी। केरला से निकला एक फूड रेस्क्यू स्टार्टअप और ये आइडिया बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, रेस्टोरेंट, बेकरीज और सुपरमार्केट्स में जो परफेक्टली एडिबल फूड बिक नहीं पाते हैं उसे वेस्ट होने देने के बजाय कस्टमर्स को काफी कम प्राइस पर अवेलेबल कराया जाता है। तो भाई इस तरह के आइडियाज आप खुद भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर ना फायदा ये है, जितने भी बिजनेसेस हैं उनको अनसोल्ड फूड से रिकवरी मिल जाती है, कस्टमर्स को चीपर फूड मिल जाता है और फूड वेस्ट भी कम होता है। तो भाई विन विन विन सिचुएशन है। तो भाई यहाँ से लेसन ये है, कभी कभी एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया किसी फैंसी इनोवेशन से नहीं बल्कि एक डेली लाइफ प्रॉब्लम से नोटिस होता है। तो भाई इस तरह के आइडियाज आप भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी वैसे भी जब बिजनेस कर रहे होते ना तो बहुत सारी चीजें हमें ट्राई करनी पड़ती है, उसके बाद भी कोई एक चीज परफेक्ट निकल कर आती है। तो बस इस तरह के आइडियाज मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

हाय, आई एम डॉक्टर श्वेता मेंदीरत्ता। मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक, यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी पर। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है, जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का, वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन, बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है, तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट लाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है, देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर कॉलिंग।

कभी कभी ना हम सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें देख लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा रिलेट कर लेते हैं और ये लगता है कि भाई ऐसी चीजें तो हमारे साथ भी होती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंशली इन द हाउस। और बात करने वाले हैं आज के सोशल स्यापा के बारे में। और अगर बात करूं मैं सोशल स्यापा की, तो यहाँ मैं बहुत सारी अजीब अजीब चीजें लेकर आती हूँ। कई बार आज का स्यापा लेकर आई है जेंजीज के बालों के बारे में, यानी कि ये स्यापा हमें ये बताने वाला है 20s में ही कई यंग मैन हेयर फॉल की प्रॉब्लम को लेकर परेशान है। और यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहती है इरेगुलर स्लीप, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, प्रोटीन की कमी और रैपिड वेट लॉस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल बहुत जल्दी इफेक्ट होती है। मतलब कि जितने जेंजीज ये लिस्ट देख रहे हैं ना, स्लीप शेड्यूल गया, स्ट्रेस हाई है, डाइट का पता नहीं, और साथ ही बाल बोल रहे हैं हम चलते हैं टाटा बाय बाय। तो भाई देखिए, टाइम हो गया स्ट्रेस को टाटा बाय बाय बोलने का, अपने प्रोटीन इनटेक को कंप्लीट करने का और स्लीप साइकिल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का, वरना ये होगा ये सारी चीजें रह जाएंगी और आपके बाल चले जाएंगे। और अगर ऐसा रेगुलर हो रहा है ना, तो सेल्फ ट्रीटमेंट लेने की बजाय एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। सो अब सोचिए ना, एक जेंजी बिना बालों की कैसे लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं ना आपके साथ ऐसा ना हो, तो अभी अपनी सिचुएशन को सीरियसली लीजिए और बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

किराने की दुकान पर अगर सिर्फ दाल चावल नहीं बल्कि पूरे परिवार की कहानी भी मिल जाए तो समझ जाइए मामला है फैमिली किराना स्टोर 2 का। सिनेमा का कैप्सूल में आज बात उस फैमिली की जहां गजानंद की किराने की दुकान है और दुकान के साथ साथ चल रहा है फैमिली ड्रामा का फुल टाइम बिजनेस। श्रीकांत वर्मा की ये कहानी बिल्कुल मिडिल क्लास मोहल्ले वाली फील देती है जहाँ खुशी भी कलेक्टिव होती है और टेंशन भी, मतलब घर में किसी एक की प्रॉब्लम हो पूरा परिवार वहाँ खड़ा होता है। तो बात करूँ अगर फैमिली किराना स्टोर की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली और उनके मोहल्ले की एवरीडे लाइफ को लेकर बनी हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। कहानी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी लाइफ है जिसे देखकर हम बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल हमारे मोहल्ले में होता है। और हाँ, सीजन 2 की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है तो गजानंद की दुकान पर शटर अभी पूरी तरह से खुला नहीं है लेकिन कस्टमर्स की एक्साइटमेंट फुल ओपनिंग तक पहुंच गई है। तो अगर आपने गुल्लक वाली सिंप्लिसिटी, टीवीएफ वाला ह्यूमर और मोहल्ले वाली रिलेटेबिलिटी पसंद है तो भाई अपने किराने की लिस्ट संभाल कर रखिए, गजानन की दुकान फिर लगने वाली है। तो ये था सिनेमा का कैप्सूल।

है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में भी पता तो होता है लेकिन रीजन नहीं पता होता कि आखिर ये चीजें होती क्यों है। तो चलिए वक्त हो गया है डू यू नो से सीधा डिड यू नो पर आने का, और आज का डिड यू नो लेकर आई हूँ आपकी आंखों के बारे में। क्या आपको पता था आपकी आंखों की जो कॉर्निया होती है, यानी आंख के सामने वाला जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है, ये हमारी बॉडी का एक अकेला ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। थाना शॉकिंग। अब आप खुद सोचो हमारी पूरी बॉडी ब्लड वेसल से कनेक्टेड है लेकिन कॉर्निया नहीं, और यही रीजन है कि जो कॉर्निया है वो ऑक्सीजन हवा से डायरेक्टली ले पाती है। कभी आपने सोचा जब आप ब्लिंक कर रहे हो तो सिर्फ आप अपनी आंखें के लिए नहीं कर रहे बल्कि ये जो आंखों की हेल्थ है ना आप उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है ना। अब इसी इंटरेस्टिंग थॉट के साथ चलिए सुनते हैं सुपर हिट गाना, और इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

हाँ जी, कई बार ना हम सोचते हैं कि हमसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं हो सकता, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तब पता चलता है कि एक छोटी सी अवेयरनेस ना कितने बड़े लॉस से हमें बचा सकती थी। तो आज मैं आपको बताने आ गई हूँ कि किस तरह से आप खुद को साइबर स्मार्ट बना सकते हो। इससे पहले एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज का इंसिडेंट है राजकोट से। राजकोट में एक 63 साल की रिटायर्ड वुमेन के 175 रुपए नहीं आ रहे थे रिफंड। तो उन्हें लगा कि क्यों ना गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च कर लेते हैं, वहां पर बात करके कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं। लेकिन यहां पर हुआ कुछ उल्टा। फेक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने व्हाट्सएप और यूपीआई के थ्रू उन्हें कन्विंस किया और उनके फोन पर भेजी एक एपीके फाइल। जैसे उन्होंने उस फाइल को ओपन किया, डाउनलोड किया, उनके अकाउंट से 1,91,000 से ज्यादा ट्रांसफर हो गए। तो देखा एक छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा लॉस हो गया। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको याद रखने हैं साइबर स्मार्ट के कुछ गोल्डन रूल्स। गूगल सर्च से कभी भी कस्टमर केयर का कोई भी नंबर ना ले। अगर नंबर ले रहे हैं तो उसे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप से कस्टमर केयर डिटेल्स वेरीफाई जरूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अननोन एपीके फाइल्स को कभी भी इंस्टॉल मत कीजिए, चाहे सामने वाला कितना भी जेन्युइनली कोशिश क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 175 का रिफंड लेने के चक्कर में 1,91,000 का लॉस हुआ है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ऑनलाइन दुनिया में एक क्लिक से पहले दो बार जरूर सोचिए। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर स्मार्ट। और अब चलिए सुनते हैं सुपर हिट गाना और मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।

Venom, please.

0: Theatre, available online only on Eros Now.
1: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

कितने बार समझाया है कि वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में इतना मत खो जाओ कि खुद की जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी की वजह से हुआ है। तो भाई देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर 17 साल की एक लड़की सेल्फी लेते वक्त अपना बैलेंस खो बैठी और हाइट से गिरकर सीधा झाड़ियों में जा फंसी। और जब बात कर ही रहे ना पहाड़ों की, तो आपको पता है पहाड़ों पर क्या मिलता है? पहाड़ों पर मिलती है सिर्फ रिवर। तो भाई यहाँ पर अब आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से सेफली रेस्क्यू किया गया। तो यहाँ पर ही इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने का सिर्फ मोटिव इतना सा है कि सेल्फी लेने के लिए ना सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको सेल्फी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो सेल्फी मत लीजिए, सिंपल। और सेल्फी लेने के लिए यार बहुत सारे प्लेसेस हैं, वहां जाके सेल्फी ले सकते हैं ना, अपनी लाइफ को इस तरह से डेंजर में डालकर सिर्फ और सिर्फ एक व्यू के लिए, दिस इज नॉट डन। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, साथ ही सुनते रहे रेडियो 89.6 FM, म्यूजिक ब्रेक के बाद।

मैं डॉक्टर गार्गी अग्रवाल हूँ. आई एम अ सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी एट अमृता हॉस्पिटल सेक्टर 88 फरीदाबाद. तो एज मोस्टली लोगों को पता है दैट अमृता हॉस्पिटल इज अ लार्ज फैसिलिटी, इज एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल एज सच ऑल्सो. एंड यहाँ पर हम कई ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी केसेस और गायनी के लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं और कई हाई रिस्क और कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सक्सेसफुली पूरे किए हैं. डिलीवरी से डर फीमेल्स में बिल्कुल एक्सपेक्टेड और एक नॉर्मल फिनोमिना है. जैसे हम सब जानते हैं कि डिलीवरी भी एक मदर के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस, एक न्यू एक्सपीरियंस होता है. और किसी भी एक रूटीन लाइफ में भी कोई भी नया एक्सपीरियंस या बहुत बड़ा काम करने पर हमेशा हम सब में भी जो है एक डर की फीलिंग सबसे ज्यादा उभर के सामने आती है. और जब फीमेल की लाइफ में इतना बड़ा चेंज और परिवर्तन हो रहा होता है तो ये डर काफी नॉर्मल है. तो डिलीवरी से डर जो है इस चीज को समझना कि ये भी एक नेचुरल फीलिंग है और इसको ये सोचना कि इससे घबराने की बजाय आप अपने अगर मिथ्स क्लियर रखेंगे, अपने दिमाग में क्लैरिटी रखेंगे तो जरूर जो है, और ऑफकोर्स सेफ्टी ऑप्शंस अपने सारे साथ रखेंगे तो जो हमारा सेफ एक एंड पॉइंट है दैट इज सेफ एंड कम्फर्टेबल डिलीवरी, वो फीमेल्स अचीव कर पाएंगी कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन. तो डेफिनेटली कई बार हम ये देखते हैं फीमेल्स में कि नॉर्मल डिलीवरी से डर लगता है या उनके केसेस में कई बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल भी नहीं होती है, बट फैमिली का प्रेशर देखते हुए उनको ये लगता है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही हैं तो कुछ कमजोरी हो रही है या उनकी तरफ से कुछ चीजें गलत हो रही हैं. तो फीमेल्स को ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन, इन दोनों का एक ही मकसद है, एक ही एंड पॉइंट है, एक ही आउटकम है, वो है सेफ मदर और सेफ बेबी. तो इन दोनों को कंपटीशन की तरह देखने की बजाय ये देखना ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में किस पेशेंट के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा सही है. और इसी की हेल्प के लिए आपके डॉक्टर्स और मरीज के जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, वो हेल्प करते हैं. तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह एक तरीके से मेडिकल एंटिटीज हैं और पेशेंट की हेल्थ, बेबी की हेल्थ और उस समय की सिचुएशन को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन का डिसीजन लिया जाता है. तो ये चीज केस टू केस और पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल रहती है. डॉक्टर.

0: हाँ जी, बातें हो गई बहुत सारी। चलिए वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का, यानी कि मैं अब लेकर आ गई हूँ फरीदाबाद की पहेली। और फरीदाबाद की पहेली ना ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हैं। तो चलिए वक्त हो गया है ये पहेली पूछने का। फरीदाबाद की वो कौन सी जगह है जहाँ एक ही जगह पर आपको शॉपिंग, फूड और घूमने का एक्सपीरियंस मिलता है और जिसका नाम सुनते ही आपको पूरी दुनिया याद आ जाती है। वाह, क्या हिंट दी है मैंने। और आपको पता है ना अब आपको क्या करना है, अब आपको जवाब देना और बताना है कि फरीदाबाद की कौन सी जगह है। और आपको जवाब देने के लिए पता है ना कहाँ जाना है, तो फटाफट से जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेजिए और देखते हैं कौन फरीदाबाद को कितना जानता है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: अब ये तो खोलो।
2: Wait, baby. Surprise. Got a nozzle in the jar. Proof.

0: कुछ हटके।
1: अरे यार डैडी, आप बैक टू बैक कॉल कर रहे हो यार। मैं करता हूँ ना, बोला ना ड्राइव कर रहा हूँ।
2: अरे हो ही नहीं सकता।
3: अरे मत यार, आप
2: लिमिट में
3: नहीं किया था मैंने। सब

ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

0: अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।
1: और भाई रामफल सुना दे, क्या हाल चाल?
2: बस बढ़िया यार, कुछ नहीं, 12वीं के पेपर में फेल हो गया अबकी बार। बस यहाँ बैठा था, टाइम पास कर रहा था और बीड़ी फूक रहा था।
1: सही है, बीड़ी लगा ले, टाइम पास हो जाएगा मेरा भी।
2: क्या करना है,
1: ला जल गई, ला मेरे को दे दे
2: यार। तू भी दिमाग खराब करता है, खरीद के पी लिया कर कभी।
1: अरे तो एक बीड़ी में गरीब हो जाएगा क्या तू? एक बीड़ी के पीछे मर रहा है।
2: अरे बीड़ी छोड़, उधर देख
1: भाई, वो अमीर घर की बड़ी लड़की है, तू दे रहा देसी कमार, तेरे काबू थोड़ी आएगी, तो सब ले रहा है।
2: हाँ, अरे फौजी बॉय बुरा, देख दिमाग का फेरा। राम राम मैडम जी, कैसे हो?
3: हट सुगले से,
4: करवा ली बेइज्जती, आगे स्वागत जान ले लो।
2: हाँ, अरे फौजी बॉय सॉरी, इट्स अ डॉग फाइट।
5: मुझे चाहिए ना यार, ना चाहिए प्यार, साइड में हट जा तू गांव के गवार, बावले से छोरे के तू पीछे पड़ा, जब मेरी तरफ

0: तो काफी अच्छा है, और इस अच्छे मूड को ट्रैफिक में फंसने की वजह से खराब होने से बचाने के लिए ना मैं लेकर आ गई हूँ फरीदाबाद की ट्रैफिक अपडेट। तो आप सभी को पता है दिल्ली एनसीआर में निकल रही है इस टाइम पर कांवड़ यात्रा, और कांवड़ यात्रा के चलते ही रूट्स पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और डाइवर्जन का असर भी है। तो भाई दिल्ली टू फरीदाबाद, फरीदाबाद टू नोएडा, तो कम्यूट करने वाले लिसनर्स मुझे आज जरूर सुने, स्पेशली जो लोग कालंदी कुंज साइड जा रहे हैं, तो भाई रूट जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज कांवड़ियों के लिए ना सेपरेट जोन बनाए गए हैं जिसकी वजह से लेन डाइवर्ट की गई है। और अगर आप गुरुग्राम की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा 9 से 11 अगस्त के लिए हैवी व्हीकल्स के लिए अल्टरनेट रूट्स की एडवाइजरी भी जारी की गई थी, इसलिए अननेसेसरी डिले से जरूर बचें। और एक और चीज आप सभी को पता है कि मॉनसून आ गया है, बारिश बहुत ज्यादा है, इस वजह से रास्तों पर आपको वाटर लॉगिंग भी मिल सकती है। तो स्पीड स्लो रखिएगा, सेफ ड्राइव कीजिएगा, ट्रैफिक में पेशेंस रखिएगा, और साथ ही अपनी डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचेगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: कल आए क्यों नहीं थे?
2: अरे भाई यार, घर पे बोला दोस्तों के साथ जाना है, तो बोलते यारी दोस्ती होनी चाहिए पर इतनी भी नहीं कि और कोई चीज इम्पोर्टेंट ही ना लगे। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, और अपने ऊपर कैसे ध्यान देते हैं? और उन्हें कौन समझाए?
3: अपनी लाइफ के पास ही तो जा रहा हूँ।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। तो देखिए भाई, स्वागत मैंने आपका फिर से कर दिया है, और दोबारा से स्वागत इसलिए किया है क्योंकि अब मैं आ गई हूँ आपके लिए फरीदाबाद की कुछ बातें लेकर। तो चलिए इम्पोर्टेंट बातों पर अब नजर डाल ही लेते हैं। NIT फरीदाबाद की कई एरियाज में पीने के पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बड़ा प्लान सामने आ गया है। तो भाई NIT वालों, अब तक आपको पानी की प्रॉब्लम होती थी ना, ये प्रॉब्लम अब आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, बिकॉज एक नया प्लान आया, और प्लान ये है 250 करोड़ का बूस्टर प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है, जिसका एम है करीब 5 लाख लोगों तक पानी की सप्लाई को इम्प्रूव करना, और इसके साथ ही पाइपलाइन नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज है फरीदाबाद के लिए, स्पेशली NIT एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, इस डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है आपके लिए। और बस अब देखना ये है कि कितने टाइम के बाद ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर नजर आता है हमें। जब तक ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर नहीं आता, तब तक आप हमें बता सकते हैं NIT या फिर आसपास के एरिया में किस जगह पर वाटर सप्लाई का क्या हाल है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रिप, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।

Please.

One wine, please.

किसी को बुलाना कितना आसान है ना, मतलब अब तो खरीदा भी जा सकता है, पर क्या ऐसी दुनिया में तुम मुझे याद रखोगे हमेशा के लिए?

हमारे रास्ते अब अलग हैं। मैंने तुम्हें भुला दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे भूल जाओ, ताकि जब हम दोबारा मिले तो अजनबी हो।

किसी के लिए हॉलिडे है, किसी के लिए सेलिब्रेशन, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है। तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @ रेडियो महारानी 89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।

0: हाँ जी, बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे ना पहेली के जवाब का, तो चलिए पहले मैं आपको जवाब सुना ही देती हूँ।
1: हाय अंजलि, मेरा नाम पलक है और मैं आपका शो रोज सुनती हूँ, मुझे आपका शो बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी जो आपने पहेली पूछी थी उसका आंसर है वॉल स्ट्रीट, और मुझे ना यहाँ जाना बहुत पसंद है क्योंकि एक तो शाम के टाइम पे यहाँ पे जो लाइटनिंग हो जाती है ना, और उसके बाद जो वाइब होती है यहाँ की अमेजिंग, और यहाँ का बिस्ट्रो 57 में खाना मेरी फेवरेट जगह है, तो मैं हमेशा जब भी वॉल स्ट्रीट जाती हूँ मैं यहीं जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है और यहाँ का खाना अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। सो या मैं रिकमेंड भी करूँगी कि अगर जो भी जाना चाहता है वो बिस्ट्रो 57 में जरूर जाए और यहाँ का खाना ट्राई करे। बाकी यहाँ पे लोग मिलते ही हैं रील्स बनाने, और बहुत रील्स बनाना भी, और बहुत सारे कैफे हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे सुकून मिलता है, पीस सी है, मतलब आई लाइक इट।
0: थैंक यू सो मच पलक, और जिस तरह से आज आपने मेरी तारीफ की है ना, उसे सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। खैर, आज आपका जवाब ये भी बताता है कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हैं, और साथ ही ये भी बताता है कि आपको शॉपिंग का कितना शौक है, बिकॉज वर्ल्ड स्ट्रीट की ना लगता है आपने एक एक गली छानी हुई है। और वर्ल्ड स्ट्रीट की अगर मैं बात करूँ ना, पर्सनली मेरा फेवरेट प्लेस है, बिकॉज एक ही जगह पर ना आपको सब कुछ मिल जाता है, अंडर वन रूफ आप सब कुछ ले सकते हो, और बहुत ही अमेजिंग जगह है। अगर आप अब तक नहीं गए हो तो जरूर जाके विजिट कीजिए, और इसी तरह से मैं आती रहूंगी हर दिन आपके लिए एक नई पहेली लेकर। तब तक एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

मैं डॉक्टर ईशा वधावन हूँ, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मैं फोर्टिस फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन, तो हम लोगों की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बहुत लंबी होती है, बट देर आर ओनली सो मेनी डेज इन अ वीक या फिर सो मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट हम मदर्स, जब कोई भी लेडी मदर बनती है, ट्रूली ब्रेन में स्टडीज हुई हैं कि चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, एक्स्ट्रा लेवल की कंपैशन वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी बार इग्नोर कर देती हैं, बाकी सबको हेल्प करते करते। इग्नोर करने में इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। बट बहुत सिंपल और वैलिड पॉइंट ये है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब आप अपना कप भरेंगी पॉजिटिव थिंग्स से तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी करेंगी। अगर आप इतनी फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं कि आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप कुछ हेल्प बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगी अल्टीमेटली।

रेडियो महारानी

0: कुछ अपने बारे में।
1: बातें तो बहुत सारी हुई है, लेकिन अब बात आती है फिट फरीदाबाद की। तो भाई ये कैसे पीछे रह सकता है। आज मैं आपके लिए फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई, और फिटनेस वाला फंडा ना सिर्फ ये नहीं बताता हमें कि वर्कआउट कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, लेकिन ये फिटनेस वाला फंडा हमें ये भी बताता है कि जो हम डेली कंज्यूम करते हैं ना, आधे लोग तो समझ ही गए होंगे एनर्जी ड्रिंक्स की मैं बात कर रही हूँ, वो किस लिमिट तक करनी है। बिकॉज आज बात करने वाले हैं एनर्जी ड्रिंक्स की, क्योंकि जब भी हमें थकान लगती है, लो एनर्जी फील होती है, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत जाकर एनर्जी ड्रिंक उठा लेते हैं। और जो जैसे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, ऐसे लगता है टुनटुन मौसी वाले लड्डू खा लिया, इतनी एनर्जी आ जाती है बॉडी में। तो पता है डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं इनका एक्सेसिव कंजप्शन किडनीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है। बिकॉज इसके अंदर ना कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हाई कैफीन हो गया, शुगर हो गया, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई जितने भी हेल्दी अडल्ट्स हैं ना, तो आपके लिए कभी कभार स्टैंडर्ड एनर्जी ड्रिंक काम कर सकती है, लेकिन डेली नहीं। और इसको डेली हैबिट मत बनाइए, खासकर अपने हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन के लिए आपको पता है ना क्या करना है? हाइड्रेशन के लिए आपको अपनी स्मार्ट चॉइसेस ही ऑप्ट करनी है। जैसे कि नॉर्मल पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, या फिर आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, ग्लूकोज भी पी सकते हो। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक से दूर रहिए। तो अगली बार जब भी एनर्जी ड्रिंक खोलने का मन करे ना, तो एक सेकंड जरूर सोचिएगा और याद कर लीजिएगा मेरी आज की बात है। और इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

लव ट्रायंगल अब थिएटर से निकलकर आपके ओटीटी स्क्रीन पर उतरने वाला है। कोकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना यानी तीन लोग एक रिलेशनशिप और प्रॉब्लम इतनी कि शायद थेरेपिस्ट भी बोले भाई मुझे इन्वॉल्व मत करो। अब फिल्म अब अगस्त में ओटीटी पर रिलीज हो रही है। जिन लोगों ने थिएटर में इस लव ट्रायंगल को

मिस कर दिया था, अब उनके लिए रिमोट ही आपका टिकट काउंटर है। और सबसे मजेदार बात, आजकल रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो ना हो, बॉलीवुड को लव ट्रायंगल पर अभी भी भरोसा है। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए, क्योंकि कोकटेल 2 अब आपके स्क्रीन पर रिलेशनशिप की नई सर्विंग लेकर आने वाला है।

ले आ गया फिर तेरे दरवाजे के बरसात से बचने का और बहाना न मिला। बाहें तेरी घर से लगी और इस दिल को कोई

0: चले एक और देर बस गया।
1: हाँ जी, बहुत सारी बातों के बाद ना फाइनली टाइम हो गया है मेरी फेवरेट चीज जानने का, यानी कि आज टिफिन में क्या है। सुबह 7 बजे आई थी, बहुत सारी मैंने बातें की है आपके साथ, काम वाली बातें हो चुकी हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना, भी ये बताओ कि आज आप अपने टिफिन में क्या लेकर आए हो। बिकॉज मैं क्या अपने टिफिन में लेकर आई हूँ ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन आज मुझे क्यूरियोसिटी है आपके टिफिन में जानने के लिए। तो भाई आपको बताया ना क्या करना है, आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर जाना है, वहां पर अपना वॉइस मैसेज भेजना, और साथ ही ना वहां पर आप फोटोज भी शेयर कर सकते हैं। बिकॉज खाना एक ऐसी चीज है जिसे देख कर बिना हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। खैर अगर मैं आज अपनी बात करूँ ना, तो मैं आज टिफिन ही नहीं लाई, बिकॉज आज है चीट मील वाला डे, तो आज मैं चीट मील करने वाली हूँ। तो खैर बहुत सारी बातें हुई है और वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों आज सिनेमा की गलियारे में बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन से नए गाने सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार, जहां आपको बताऊंगा कुछ नई कहानियां, ट्रेलर, टीजर, नए स्टार्स, नई जोड़ियां, द एक्टोरियल चैंपियन, रोमांटिक हो, कॉमेडी हो या फिर हॉरर का किरदार या सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानियां। हिंदी पटी से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक का ट्रैक तो कहीं होगा हॉलीवुड का धमाल। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूं सिनेमा की गलियारे में, लेकिन सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा की गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

मैं डॉक्टर ईशा वधावन हूँ, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं फोर्टिस फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन, तो हम लोगों की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बहुत लंबी होती है, बट देर आर ओनली सो मेनी डेज इन अ वीक या फिर सो मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट हम मदर्स, जब कोई भी लेडी मदर बनती है, ट्रूली ब्रेन में स्टडीज हुई हैं कि चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, एक्स्ट्रा लेवल की कंपैशन वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी बार इग्नोर कर देती हैं बाकी सबको हेल्प करते करते। इग्नोर करने में इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। बट बहुत सिंपल और वैलिड पॉइंट ये है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब आप अपना कप भरेंगी पॉजिटिव थिंग्स से तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी करेंगी। अगर आप इतनी फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं कि आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप कुछ हेल्प बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगी अल्टीमेटली। डॉक्टर

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और देखिए मेघा तो बरस ही रहे हैं, आज पूरा दिन भी ऐसी थंडर स्टॉर्म रहने वाला। और बात करें फिल्मी गलियारे की, तो एक नई वेब सीरीज चुंबक का जो कि चर्चाओं में बनी ही हुई है, इसकी ऑफिशियल डेट जो है 28 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाने वाली है। इस कहानी की अगर बात करें तो एक कॉमेडी ड्रामा होने वाली है जो कॉलोनी के 5 नेबर्स की एवरीडे लाइफ और हंसी मजाक के किस्से कहानियां लेकर के आने वाली है। अब नाम चुंबक रखा गया है तो यार देखो थोड़ी सी कहानी का चंग देखने के बाद ही समझ आएगा कि ऐसा कुछ अलग सा नाम क्यों है भाई। जहां आतिश कपाड़िया की बात करें, मेन कैरेक्टर सिनी को जाते हैं जिन्होंने सारा भाई वर्सेस सारा भाई या खिचड़ी जैसी कहानियों को सबके सामने लाए थे। कास्ट में लीड किरदार में नीना गुप्ता होने वाली, तो वहीं देवेंद्र भोजानी, अर्जुन बिजलानी, सुमित व्यास जैसे स्टार्स इस कहानी में नजर आएंगे, जहां पे कॉमेडी से भरपूर डबल डोज हमें मिलने वाला है। तो रहेगा इंतजार 28 अगस्त का OTT प्लेटफॉर्म पर कहानी की स्ट्रीम होने का। बाकी ऐसे भी चर्चाएं करता रहूंगा। उससे पहले का और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

किराने की दुकान पर अगर सिर्फ दाल चावल नहीं बल्कि पूरे परिवार की कहानी भी मिल जाए तो समझ जाइए मामला है फैमिली किराना स्टोर 2 का। सिनेमा का कैप्सूल में आज बात उस फैमिली की जहां गजानंद की किराने की दुकान है और दुकान के साथ साथ चल रहा है फैमिली ड्रामा का फुल टाइम बिजनेस। श्रीकांत वर्मा की ये कहानी बिल्कुल मिडिल क्लास मोहल्ले वाली फील देती है जहां खुशी भी कलेक्टिव होती है और टेंशन भी, मतलब घर में किसी एक की प्रॉब्लम हो पूरा परिवार वहां खड़ा होता है। तो बात करूं अगर फैमिली किराना स्टोर की जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली और उनके मोहल्ले की एवरीडे लाइफ को लेकर बनी हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। कहानी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी लाइफ है जिसे देखकर हम बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल हमारे मोहल्ले में होता है। और हाँ, सीजन 2 की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है तो गजानंद की दुकान पर शटर अभी पूरी तरह से खुला नहीं है लेकिन कस्टमर्स की एक्साइटमेंट फुल ओपनिंग तक पहुंच गई है। तो अगर आपने गुल्लक वाली सिंप्लिसिटी, टीवीएफ वाला ह्यूमर और मोहल्ले वाली रिलेटेबिलिटी पसंद है तो भाई अपने किराने की लिस्ट संभाल कर रखिए, गजानन की दुकान फिर लगने वाली है। तो ये था सिनेमा का कैप्सूल।

हाँ जी, चलिए वक्त हो गया है फरीदाबाद से निकलकर देश के दूसरे कोने में जाने का। और आज ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। ये बताने वाली हूँ कि एक शाम में आप दो दो सनसेट विजिट कर सकते हो। भाई देखिए, 12 अगस्त यानी कि कल के दिन ना कुछ खास होने वाला है, और ये चीज होने वाली है स्पेन के अंदर। इसका नाम है आवेयानोसा दे मेन्यू विलेज। तो भाई जहाँ पर होने वाला है सनसेट से जस्ट पहले टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि सीधी सी बात ही है, एक्लिप्स की वजह से कुछ देर के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल सनसेट जैसा माहौल बनेगा। और जैसे एक्लिप्स खत्म होगा सूरज दोबारा से नजर आएगा, और फिर कुछ ही मिनट्स बाद एक्चुअल सनसेट होगा। यानी लोगों को एक ही शाम में दो बार सनसेट का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो भाई देखिए, नेचर के कैलेंडर में भी कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस मिल जाते हैं। तो देखा, बोला था ना कुछ इंटरेस्टिंग सच लेकर आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हम बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाले हैं और इसी 15 अगस्त के मौके पर एक बहुत ही बढ़िया कहानी पैट्रियोटिक स्टोरी आने वाली है, नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो ये 15 अगस्त को स्ट्रीम की जाने वाली है और जो दो पार्ट में रिलीज की जाएगी, पहला पार्ट रात 9 बजे तो दूसरा पार्ट रात 10 बजे स्ट्रीम होने वाला। पहलगाम में हुए अटैक के जवाब में भारत की 88 घंटे की मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इम्पैक्ट को दिखाया जाने वाला है इस कहानी में, जहां लीडरशिप से लेकर के ग्राउंड ऑपरेटिव्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज, अकाउंट्स शामिल होते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ थी, हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द, तो अभी भाई

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर श्वेता मेंदीरत्ता। मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक, यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी पर। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है, जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का, वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन, बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है, तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट खिलाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है, देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

0: ना चले हैं, ठंड पै गई है, कार चलिए
1: नहीं, पहले जब

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्म में फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं हनुमान अंश के बारे में, जिसको लास्ट वीकेंड रिलीज किया गया, जहाँ पहले कहते जुलाई को होता लेकिन फिर इसकी डेट शिफ्ट की गई 7 अगस्त के लिए। रिलीज होते साल विशाल चतुर्वेदी की एक कहानी पसंद की गई, जहाँ शौबिनब, सत्य, विहान, शज और चंदा आनंद जैसे स्टार्स नजर आ। बात करें कहानी के बारे में तो ये एक कहानी नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित और डिवोशनल स्पिरिचुअल ड्रामा, जो कि फेथ, सेवा, नाम भक्ति और इनर शोभनम सत्य के एक्टिंग को कई जगह बहुत अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया, जो कि हर टचिंग भी रहा। म्यूजिक हो चाहे डिवोशनल गाने, अच्छा खासा प्यार मिला है। रेटिंग्स की बात करें तो 5 out of 3.5 रेटिंग मिलती नजर आई। अभी देखते हैं कि और कुछ दिन ही हुए, आने वाले वक्त में कितना प्यार मिलता है, कितना प्यार बटोरती नजर आएगी ये कहानी, देखना होगा। बाकी चर्चा होती रहेंगी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: पतंजलि।
1: हाँ जी, चलिए वक्त हो गया है फरीदाबाद से निकलकर देश के दूसरे कोने में जाने का। और आज
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्म ये फ्लेवर। दोस्तों सिनेमा के कैलेंडर में हम बात करते हैं बॉलीवुड के उस एक्शन स्टार की जिनकी पर्सनालिटी, पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने 90s के सिनेमा को एक अलग अंदाज दिया। एक ऐसा एक्टर जिन्होंने एक्शन के साथ रोमांस, कॉमेडी और इमोशनल रोल्स में भी ऑडियंस का दिल जीता। बात हो रही है 90s के एक्शन हीरो की, तो सुनील शेट्टी का नाम ही आने वाला है। आप सब जानते हैं सुनील शेट्टी जो कि अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं यानी कि अन्ना। इनके बारे में बहुत ही चर्चा आज करने वाला सिनेमा के गलियारे से, लेकिन सुनाऊंगा उससे पहले कुछ खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ। और ये ट्रैक आप सभी के लिए

0: अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए,

मैं डॉक्टर गार्गी अग्रवाल हूँ. आई एम अ सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी एट अमृता हॉस्पिटल सेक्टर 88 फरीदाबाद. तो एज मोस्टली लोगों को पता है दैट अमृता हॉस्पिटल इज अ लार्ज फैसिलिटी, इज एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल एज सच ऑल्सो. एंड यहाँ पर हम कई ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी केसेस और गायनी के लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं और कई हाई रिस्क और कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सक्सेसफुली पूरे किए हैं. डिलीवरी से डर फीमेल्स में बिल्कुल एक्सपेक्टेड और एक नॉर्मल फिनोमिना है. जैसे हम सब जानते हैं कि डिलीवरी भी एक मदर के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस, एक न्यू एक्सपीरियंस होता है. और किसी भी एक रूटीन लाइफ में भी कोई भी नया एक्सपीरियंस या बहुत बड़ा काम करने पर हमेशा हम सब में भी जो है एक डर की फीलिंग सबसे ज्यादा उभर के सामने आती है. और जब फीमेल की लाइफ में इतना बड़ा चेंज और परिवर्तन हो रहा होता है तो ये डर काफी नॉर्मल है. तो डिलीवरी से डर जो है इस चीज को समझना कि ये भी एक नेचुरल फीलिंग है और इसको ये नॉर्मल है. तो डिलीवरी से डर जो है इस चीज को समझना कि ये भी एक नेचुरल फीलिंग है और इसको ये सोचना कि इससे घबराने की बजाय आप अपने अगर मिथ्स क्लियर रखेंगे, अपने दिमाग में क्लैरिटी रखेंगे तो जरूर जो है, और ऑफकोर्स सेफ्टी ऑप्शंस अपने सारे साथ रखेंगे तो जो हमारा सेफ एक एंड पॉइंट है दैट इज सेफ एंड कंफर्टेबल डिलीवरी, वो फीमेल्स अचीव कर पाएंगी कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन. तो डेफिनेटली कई बार हम ये देखते हैं फीमेल्स में कि नॉर्मल डिलीवरी से डर लगता है या उनके केसेस में कई बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल भी नहीं होती है, बट फैमिली का प्रेशर देखते हुए उनको ये लगता है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही है तो कुछ कमजोरी हो रही है या उनकी तरफ से कुछ चीजें गलत हो रही हैं. तो फीमेल्स को ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है. नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन, इन दोनों का एम है वो है सेफ मदर और सेफ बेबी. तो इन दोनों को कंपटीशन की तरह देखने की बजाय ये देखना ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में किस पेशेंट के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा सही है. और इसी की हेल्प के लिए आपके डॉक्टर्स और मरीज के जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, वो हेल्प करते हैं. तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह एक तरीके से मेडिकल एंटिटीज हैं और पेशेंट की हेल्थ, बेबी की हेल्थ और उस समय की सिचुएशन को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन का डिसीजन.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा है लेकर के शो यानी कि फिल्म ही फ्लेवर। यार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सुनील शेट्टी के बारे में जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर। सुनील शेट्टी 1992 में फिल्म बलवान से बॉलीवुड में डेब्यू किया। शुरुआत से ही उनकी मस्कुलर पर्सनालिटी और एक्शन इमेज ऑडियंस को पसंद आई। 90s में उनकी फिल्म्स की एक अलग ही फैन फॉलोइंग रही। अक्षय और परेश के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने भी लोगों का अच्छा खासा प्यार बटोरा। जहाँ की कुछ चुनिंदा और बेहतरीन कहानी की बात की जाए, मोहरा, दिलवाले, बॉर्डर, धड़कन, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी जैसी कहानी उन्हें अच्छा खासा प्यार बटोरा। बॉर्डर में अगर बात की जाए तो कैप्टन भैरव सिंह के कैरेक्टर ने उन्हें एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट दिलाई, जबकि धड़कन के देव ने उन्हें रोमांटिक और इमोशनल साइड के सामने रखा। ऐसे उनके बारे में और भी चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन आज नहीं, उस मुलाकात होगी अब कल के दिन सेम टाइम से। तब तो सुनते रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।

लव ट्रायंगल अब थिएटर से निकलकर आपके ओटीटी स्क्रीन पर उतरने वाला है। कोकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना यानी तीन लोग एक रिलेशनशिप और प्रॉब्लम इतनी कि शायद थेरेपिस्ट भी बोले भाई मुझे इन्वॉल्व मत करो। अब फिल्म अब अगस्त में ओटीटी पर रिलीज हो रही है। जिन लोगों ने थिएटर में इस लव ट्रायंगल को मिस कर दिया था, अब उनके लिए रिमोट ही आपका टिकट काउंटर है। और सबसे मजेदार बात, आजकल रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो ना हो, बॉलीवुड को लव ट्रायंगल पर अभी भी भरोसा है। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि कोकटेल 2 अब आपके स्क्रीन पर रिलेशनशिप की नई सर्विंग लेकर आने वाला है।

मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बकर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बकर सिरा कूड़े।

0: Lovers.
1: किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हम जीना देर से शुरू करते हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाला जाए, थोड़ा हंसा जाए, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें की जाए और कुछ ऐसा सुना जाए जो मूड को हल्का सा बेहतर बना दे। घड़ी ने बजा दिए हैं दो और शुरू हो चुका है द हैप्पी आवर्स। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो महारानी। अगले दो घंटे में बातें होंगी जेंजी के नए वर्ड्स की, ट्रेंडिंग मीम्स की, बॉलीवुड की फैशन और ट्रेंड्स की और अपने फरीदाबाद की लोकल स्टोरीज की। तो बस बने रहिए मेरे साथ द हैप्पी आवर्स में। शुरुआत करते हैं एक ऐसे वर्ड से जो आजकल डेटिंग मार्केटिंग में छाया हुआ है। अब ये वर्ड कौन सा है बताऊंगी इसको थोड़ी देर में, लेकिन तब तक के लिए ये गाना सिर्फ आपके लिए।

watch more, log on to www.erosnow.com.

दो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।

revenons, please. हेलो सर, आपका अकाउंट खतरे में है। मेरा अकाउंट नहीं भाई।

0: Lovers.
1: So I love how Gen Z is dating, but honestly it scares me a little. क्योंकि मेरे को लगता है कि डेटिंग का मतलब यही है कि हम किसी से मिले, उसे जाना, उसे पहचाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करा, देन रिलेशनशिप में आए एंड देन शादी. लेकिन Gen Z ने डेटिंग को भी एक पूरा लाइफ एक्सपीरियंस बना दिया है और इसी को लेकर डेटिंग मार्केटिंग में एक नया वर्ड आया है, लव लोरिंग. मतलब आप किसी से मिले, उसके साथ डेट पे गए, वो मोमेंट इंजॉय करें एंड देन मूव ऑन. बस इतना ही. मतलब नो प्रेशर, नो रिजिड चेकलिस्ट, नो फ्यूचर में क्या होगा, कुछ भी नहीं. बस इंसान को जान लो, मोमेंट को इंजॉय करो और जो स्टोरी बनती है उसको जियो एंड देन बैक टू होम. बेसिकली Gen Z इज नॉट डेटिंग फॉर द रिलेशनशिप, दे आर डेटिंग फॉर द लोर. और सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये जीनियस साउंड कर रहा है या अनसीरियस. लेकिन एक बात तो क्लियर है कि Gen Z ने डेटिंग को डेटिंग की तरह देखना छोड़ दिया है और इसे सेल्फ डेवलपमेंट बना दिया है. खैर अब सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो ही गई है, लेकिन इसी के साथ इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही ज्यादा मीम ट्रेंड कर रहा है और ये मीम है कौन सा बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. लेकिन उससे पहले ये गाना आपके लिए.
0: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा.

मैं डॉक्टर गार्गी अग्रवाल हूँ. आई एम अ सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी एट अमृता हॉस्पिटल सेक्टर 88 फरीदाबाद. तो एज मोस्टली लोगों को पता है दैट अमृता हॉस्पिटल इज अ लार्ज फैसिलिटी, इज एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल एज सच ऑल्सो. एंड हम कई ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी केसेस और गायनी के लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं और कई हाई रिस्क और कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सक्सेसफुली पूरे किए हैं. डिलीवरी से डर फीमेल्स में बिल्कुल एक्सपेक्टेड और एक नॉर्मल फिनोमिना है. जैसे हम सब जानते हैं कि डिलीवरी भी एक मदर के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस, एक न्यू एक्सपीरियंस होता है. और किसी भी एक रूटीन लाइफ में भी कोई भी नया एक्सपीरियंस या बहुत बड़ा काम करने पर हमेशा हम सब में भी जो है एक डर की फीलिंग सबसे ज्यादा उभर के सामने आती है. और जब फीमेल की लाइफ में इतना बड़ा चेंज और परिवर्तन हो रहा होता है तो ये डर काफी नॉर्मल है. तो डिलीवरी से डर जो है इस चीज को समझना कि ये भी एक नेचुरल फीलिंग है और इसको ये सोचना कि इससे घबराने की बजाय आप अपने अगर मिथ्स क्लियर रखेंगे, अपने दिमाग में क्लैरिटी रखेंगे तो जरूर जो है, और ऑफ कोर्स सेफ्टी ऑप्शंस अपने सारे साथ रखेंगे तो जो हमारा सेफ एक एंड पॉइंट है दैट इज सेफ एंड कंफर्टेबल डिलीवरी, वो फीमेल्स अचीव कर पाएंगी कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन. तो डेफिनेटली कई बार हम ये देखते हैं फीमेल्स में कि नॉर्मल डिलीवरी से डर लगता है या उनके केसेस में कई बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल भी नहीं होती है, बट फैमिली का प्रेशर देखते हुए उनको ये लगता है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही है तो कुछ कमजोरी हो रही है या उनकी तरफ से कुछ चीजें गलत हो रही हैं. तो फीमेल्स को ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है. नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन इन दोनों का एक ही मकसद है, एक ही एंड पॉइंट है, एक ही आउटकम है, वो है सेफ मदर और सेफ बेबी. तो इन दोनों को कंपटीशन की तरह देखने की बजाय ये देखना ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में किस पेशेंट के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा सही है. और इसी की हेल्प के लिए आपके डॉक्टर्स और मरीज के जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, वो हेल्प करते हैं. तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह एक तरीके से मेडिकल एंटिटीज हैं और पेशेंट की हेल्थ, बेबी की हेल्थ और उस समय की सिचुएशन को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन का डिसीजन लिया जाता है. तो ये चीज केस टू केस और पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल रहती है. Doctor calling.

0: आवर्स।
1: इंस्टाग्राम पे आजकल आप लोगों ने ये ऑडियो तो सुन ही ली होगी,
2: वास्ते गुने हुई यार।
1: पर इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग पता है आप सभी को? एक्चुअल में ये एक अमेरिकन वर्ड है और ये एक्चुअल वर्ड ये है कि कैन आई गेट अ हो येट, जिसको हिंदी में अगर समझा जाए मींस कि हाई फाई। और अमेरिकन वर्ड में इस फ्रेज के अकॉर्डिंग ये होता है कि गिव मी अ हाई फाई। जिस पर्सन ने इस मीम को बनाया वो एक्चुअल में इसकी अमेरिकन इंग्लिश समझ नहीं पाया, उसको समझ आया
2: वास्ते गुने हुई यार।
1: अब ये मीम इतनी ट्रेंड कर गई है कि इस पे गाना भी आ चुका है, इसका स्लो वर्जन भी है, इसका फास्ट वर्जन भी है, इस पे लोग डांस भी कर रहे हैं, इस पे लोग फनी मीम भी बना रहे हैं, इतना पॉपुलर हो चुका है ये। वैसे फनी बात से याद आया कि हमारी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं होता, लेकिन ओपिनियन हर चीज पर होता है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, वही चार लोग। खैर, अब ये चार लोग क्या कहते हैं बताऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन तब तक के लिए ये गाना आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: लव ट्रायंगल अब थिएटर से निकलकर आपके ओटीटी स्क्रीन पर उतरने वाला है। कोकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना यानी तीन लोग एक रिलेशनशिप और प्रॉब्लम इतनी कि शायद थेरेपिस्ट भी बोले भाई मुझे इन्वॉल्व मत करो। अब फिल्म अब अगस्त में ओटीटी पर रिलीज हो रही है। जिन लोगों ने थिएटर में इस लव ट्रायंगल को मिस कर दिया था अब उनके लिए रिमोट ही आपका टिकट काउंटर है। और सबसे मजेदार बात, आजकल रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो ना हो, बॉलीवुड को लव ट्रायंगल पर अभी भी भरोसा है। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि कोकटेल 2 अब आपकी स्क्रीन पर रिलेशनशिप की नई सर्विंग लेकर आने वाला है।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: बर्ड्स।
1: आपने कभी सोचा है कि ये चार लोग आखिर रहते कहाँ हैं? क्योंकि जब भी हम कुछ करने जाते हैं, ये बिना बुलाए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। करियर चेंज करो तो ये आ जाते हैं, कुछ नया स्टार्ट करो तो ये चार लोग आ जाते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन लो फिर ये चार लोग आ जाते हैं। और इनका फेवरेट डायलॉग, हम तो बस आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन सच ये है कि कई बार हम अपने डिसीजंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें डर रहता है कि ये चार लोग क्या कहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये चार लोग ना आपकी लाइफ जीने नहीं आएंगे, आपके रिस्क नहीं लेंगे, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं करेंगे, तो फिर इनके ओपिनियन को अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील क्यों देना भाई? आपको हर किसी को प्रूव करने के चक्कर में ना खुद को डिसअपॉइंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वैसे भी कल अगर आप कामयाब हो गए ना तो यही चार लोग कहेंगे, हमें तो पता ही था तुम तो कर ही ले जाओगे, हमें तो पूरा भरोसा था तुम पर। तो चार लोगों को ना थोड़ा म्यूट कीजिए और अपनी लाइफ की वॉल्यूम बढ़ाइए। और अब वॉल्यूम बढ़ाने की बात मैंने कर ही दी है तो एक फुल वॉल्यूम पे गाना हो जाए और गाने के बाद आपको बताऊंगी कि आज के पॉपकॉर्न अपडेट में क्या अपडेट आया है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: watch more, log on to www.erosnow.com. Best of
1: Anjali. हाँ जी, चलिए वक्त हो गया है फरीदाबाद से निकल कर देश के दूसरे कोने में जाने का। और आज ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। ये बताने वाली हूँ कि एक शाम में आप दो दो सनसेट विजिट कर सकते हो। भाई देखिए, 12th अगस्त यानी कि कल के दिन ना कुछ खास होने वाला है, और ये चीज होने वाली है स्पेन के अंदर। इसका नाम है आबेयानुसा दे मेन्यू विलेज। तो भाई जहाँ पर होने वाला है सनसेट से जस्ट पहले टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि सीधी सी बात ये है, एक्लिप्स की वजह से कुछ देर के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल सनसेट जैसा माहौल बनेगा। और जैसे एक्लिप्स खत्म होगा सूरज दोबारा से नजर आएगा, और फिर कुछ ही मिनट्स बाद एक्चुअल सनसेट होगा। यानी लोगों को एक ही शाम में दो बार सनसेट का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो भाई देखिए, नेचर के कैलेंडर में भी कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस मिल जाते हैं। तो देखा, बोला था ना कुछ इंटरेस्टिंग साथ लेकर आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: watch more, log on to www.erosnow.com. 89.6.
1: रेडियो महारानी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: आवर्स।
1: सो ऑल द इमरान हाशमी फैंस और स्पेशली वो लोग जो मेरी तरह आवारापन पार्ट वन को थिएटर में दोबारा देखने का वेट कर रहे थे, तो आप सभी के लिए मैं एक अपडेट लेकर आई हूँ। अगर आप भी ये सोच रहे थे कि आवारापन पार्ट वन को आवारापन टू के रिलीज होने से पहले थिएटर में री रिलीज कर देना चाहिए ताकि स्टोरी को एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर देखने का मौका मिले, तो विशेष फिल्म्स और खुद इमरान हाशमी की तरफ से एक ताजा अपडेट आई है। आवारापन का फर्स्ट पार्ट थिएटर्स में री रिलीज किया

लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन ट्विस्ट है, बताऊं? और ट्विस्ट ये है कि आवारापन 2 से पहले नहीं, आवारापन 2 के रिलीज होने के बाद। यानी मेकर्स की स्ट्रैटेजी ये है कि आवारापन 2 के बाद फर्स्ट पार्ट को एक प्रीक्वल की तरह ऑडियंस के सामने दोबारा लाया जाए। और सच बताऊं तो मुझे ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा कि पिया स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है, लेकिन आप बताइए कि आवारापन पार्ट 1 और आवारापन 2 दोनों को थिएटर में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? और अब इमरान हाशमी की बात हो ही रही है, आवारापन की बात हो रही है, तो इसी मूवी से एक गाना हो जाए। सुनिए ये गाना और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आज स्टाइल स्टूडियो में नया क्या है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: dancing the night away.
1: ये तो अपने कपड़े उतार लिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सभी नंगे हैं, देखना।
2: या
1: कम ऑन ना।

0: पर्स।
1: अगर आपको भी कभी कभी ना किसी का आउटफिट देख के ये लगता है कि आउटफिट तो बहुत सिंपल है फिर भी इतना एक्सपेंसिव कैसे लग रहा है, वेल फैशन में ना इसका आंसर अक्सर ब्रांड नहीं होता, कलर कॉम्बिनेशन होता है। आज के स्टाइल स्टूडियो में मैं आपको बता रही हूँ 3 कलर कॉम्बिनेशंस जो आउटफिट को इंस्टेंटली क्लासी और एक्सपेंसिव लुकिंग बना देते हैं। पहला है कि चॉकलेट ब्राउन विद बेबी ब्लू, क्योंकि ब्राउन का रिच टोन और बेबी ब्लू की सॉफ्टनेस साथ में एकदम क्लासी और एफर्टलेस लुक देती है। और दूसरा है कि ऑलिव ग्रीन विद बटर येलो, जो कि फ्रेश शीक और परफेक्ट है समर कॉम्बिनेशन के लिए। और अगर आपको डे टाइम लुक थोड़ा स्टाइलिश रखना है तो आप इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे है बर्गंडी विद ग्रे, और ये कॉम्बिनेशन देता है रिच एलिगेंट और क्वाइट लग्जरी वाइब बिना ओवरडू की। ये 3 कलर कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आप इन्हें समर डेज में इजिली कैरी कर सकते हैं। तो अगली बार ना वार्डरोब के सामने खड़े होकर ये मत सोचना कि मेरे पास कुछ नया है ही नहीं, क्योंकि कभी कभी न्यू आउटफिट नहीं न्यू कलर कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। और अब फैशन से निकलते हैं और चलते हैं अपने शहर की तरफ। फरीदाबाद में क्या है खास बताऊंगी थोड़ी देर में, तब तक के लिए ये गाना आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

अगर आपको लगता है कि घूमने के लिए ना हर बार फरीदाबाद से बाहर जाना पड़ेगा, तो एक बार ये जगह जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बताती हूँ आपको एक ऐसी पीसफुल जगह के बारे में जो शायद आपने पहले ना कभी सुनी हो। बड़कल लेक और अंखिर विलेज के पास अरावली की पहाड़ियों की एक परसौन टेम्पल, जिसे महर्षि पराशर तपोभूमि भी कहा जाता है। माना जाता है कि महर्षि पराशर ने ना यहीं तपस्या की थी, और यहाँ आपको मंदिर के साथ साथ ग्रीनरी, पेड़ पौधों से घिरा शांत माहौल और एक पवित्र कुंड देखने को मिलेगा, जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। और इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में ना छोटा सा झरना भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर आपको कभी सिटी की भीड़ भाड़ से ब्रेक चाहिए और थोड़ा नेचर के बीच टाइम स्पेंड करना है, तो परसौन टेम्पल को अपने लिस्ट में जरूर रखिए। और अगर एंट्री की बात करी जाए तो एंट्री भी फ्री है। तो अगली बार फरीदाबाद में कुछ अलग एक्सप्लोर करने का मन हो, एक बार यहाँ घूम के आइएगा। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: आई है हैप्पी आवर्स।
1: किसी ने क्या खूब कहा है कि हंसी कभी कभी अच्छी लगती है और खुशी इंसान को रोज चाहिए होती है। और शायद हम सबको खुशी को लेकर अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ बड़ा होगा हम तभी खुश होंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, कोई अचीवमेंट होगी, कोई स्पेशल पर्सन लाइफ में आएगा, तभी हम खुश हो सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स अक्सर बहुत छोटे होते हैं। किसी अपने को बिना वजह फोन करना, अपना फेवरेट गाना सुनना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, या फिर बस एक शाम बिना किसी टेंशन के गुजार देना। क्योंकि खुशी ना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो वो छोटी छोटी फीलिंग्स हैं जिन्हें हम अक्सर नोटिस करना भूल जाते हैं। तो खुशी को कल के लिए सेव मत कीजिए, जो अच्छा है उसे फील कीजिए, जो अपना है उसकी कदर कीजिए, और जो मोमेंट है उसे जी लीजिए। इसी खूबसूरत थॉट के साथ आज के द हैप्पी आवर्स को करते हैं शट डाउन। मैं हूं आरजे पलक, आप सुन रहे थे 89.6 रेडियो मारानी। कल फिर मिलेंगे 2 बजे, लेकर आऊंगी बहुत सी बातें और मस्ती आप सभी के लिए। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए 89.6 रेडियो मारानी के साथ।
2: थारी किस्मत में गुलाम लिखे है। रानी गुलाम में नहीं, राजा ने मिला करा।

हाँ जी, चलिए वक्त हो गया है फरीदाबाद से निकलकर देश के दूसरे कोने में जाने का। और आज ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। ये बताने वाली हूँ कि एक शाम में आप दो दो सनसेट विजिट कर सकते हो। भाई देखिए, 12 अगस्त यानी कि कल के दिन ना कुछ खास होने वाला है, और ये चीज होने वाली है स्पेन के अंदर। का नाम है आवेयानोसा दे मेन्यू विलेज। तो भाई जहाँ पर होने वाला है सनसेट से जस्ट पहले टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि सीधी सी बात ही है, एक्लिप्स की वजह से कुछ देर के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल सनसेट जैसा माहौल बनेगा। और जैसे एक्लिप्स खत्म होगा सूरज दोबारा से नजर आएगा, और फिर कुछ ही मिनट्स बाद एक्चुअल सनसेट होगा। यानी लोगों को एक ही शाम में दो बार सनसेट का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो भाई देखिए, नेचर के कैलेंडर में भी कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस मिल जाते हैं। तो देखा, बोला था ना कुछ इंटरेस्टिंग सच लेकर आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे

0: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।
1: कुछ हट

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ, रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

असलियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: I hate water wasting रे, जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं,
3: कुछ हटके।
4: जी वो तो हम हैं ही कुछ हटके, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, कहीं से शक की बात नहीं आती। स्वागत है जी आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? देखो मैं बस इतना बताने आया हूँ कि मैं आ चुका हूँ और अगले 3 घंटों तक आप सभी के साथ बैठे रहूंगा। क्या क्या बातें होंगी उसके बारे में बाद में बताऊंगा, बट अभी तो आप लोगों के लिए गाना चला देता हूँ ना। देखो अभी आया हूँ, मस्ती होगी, गाने चलेंगे, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है इंसान टेंशन में बैठा होता है तो टेंशन दूर कर दो, कहते ना म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन, तो ये म्यूजिक आप लोगों के लिए मेडिसिन की तरह ही वर्क करेंगे क्योंकि गाने अच्छे अच्छे चलाऊंगा आप सभी के लिए। फिलहाल सुनिए इस गाने को, मैं बस यूं गया और यूं आया, टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज की।
5: I like it too. Awesome.

0: भी पॉप कूल।
1: करण औजला की आवाज में था ये गाना, और इसी गाने के साथ रेडियो महारानी पर HR 896 सुन रहे आप, और मैं हूँ
2: रेडियो का गौरव आरजे गौरव।
1: बिल्कुल, रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का। एंड अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज है मंगलवार का दिन, और पूरे के पूरे 4 घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा। फरीदाबाद के बारे में भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फरीदाबाद के बारे में बात करने की। एंड अभी आज मौसम विभाग क्या कह रहा है आने वाले टाइम के लिए, उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, आप लोगों को इसी बीच अगर मुझसे बातें करनी है ना, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और वैसे भी ये वीक तो सैटरडे छुट्टी होने वाली है आप लोगों की, क्यों पता है सबको, 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो अभी से ही मार्केट में रौनक लग चुकी है और झंडे मिल रहे हैं, तिरंगे मिल रहे हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो जो पतंग आती ना तिरंगे वाली, प्लीज़ वो मत खरीदिएगा, क्योंकि वो खरीदते हैं फिर वो कटती हैं तो दिल पे एक खंजर सा चल जाता है। तो प्लीज़ इसके बारे में ज़रा सोचिए आप लोग। और हाँ, एक और चीज़, मैं ना आप सभी के लिए आज बढ़िया से बढ़िया गाने चलाऊँगा, एक से बढ़कर एक। तो आप लोग भी रेडियो महारानी के साथ जुड़े रहिए, ये रेडियो का गौरव आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला है। और थोड़ा सा ना बात करेंगे, ये जो अंडरपास में पानी भरा था ना फ्राइडे को जो भरा था शाम को, रात को, उसके बारे में करेंगे बात। और इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो मेरा एक नंबर है सिंपल सा, 9654896896। फिलहाल आप सभी रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजने वाले हैं, और उन्हीं में से ये गाना, दिल्ली से मनाली अगर जाने का मन है तो जरूर जाइए, मगर इस गाने को एंजॉय करते हुए जाइए रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आपका एक ना एक दोस्त ऐसा होगा जो कि जिम जाता होगा, और उसी ग्रुप में एक दोस्त ऐसा भी होगा जो बिल्कुल भी कभी भी जिम नहीं जाता होगा, और ये दोनों एक दूसरे को पागल समझते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो, हम सब की लाइफ में कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है जो रेगुलर जिम जाता है। ही इज अ जिम गोअर रेगुलर, उसकी बॉडी बन भी नहीं रही फिर भी जा रहा है। और एक दोस्त ऐसा होता है जो कभी भी जिम नहीं गया, जिम को बस बाहर बाहर से देखा, उसने अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। तो ये दोनों दोस्त एक दूसरे को हमेशा पागल समझते हैं, और कंपैरिजन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फनी बन जाता है। चलिए, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड देखो यार, फरीदाबाद में बहुत सारे जिम खुल गए। एक टाइम था जब बहुत कम जिम थे, सेक्टर 15 बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जिम हुआ करते थे, और छोटी छोटी जगहों पर जो लोहे वाले जिम होते ना वो अल्टीमेट थे। खैर, वापस आते हैं अपने मुद्दे में। कंपैरिजन इसलिए फन नहीं बन जाता क्योंकि जिम वाले वर्सेस नॉन जिम वाले, एक कैलोरीज काउंट करता है तो दूसरा अपने स्नैक्स काउंट करता है कि चलो यार मार्केट चलते हैं, समोसे खाएंगे, मोमोज खाएंगे। और पता है जो जिम जाता है ना वो इंसान ये सब चीज़ें अवॉइड करता है, ट्राई करता है कि ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करूं, क्योंकि देखो मेहनत करते हैं जिम जाके। फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। जो जिम जाता है वो ज्ञान देगा कि भाई तुझे पता कितनी कैलोरीज होती है इसमें, मत खाया कर। और जो बाहर जो बंदा जिम नहीं जाता वो बोलता है कि भाई एक ही तो जिंदगी मिली है, इसमें तो खाएंगे ना। तो देखो, जिम वाले प्रोटीन शेक पी जाते हैं, और जो नहीं जिम जाते वो चाय बिस्किट पे ही सरवाइव कर जाते हैं। तो देखो, दोनों के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं, दोनों के अपने अपने फिगर्स होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग जिम नहीं भी जाते हैं तो भी वर्कआउट करना जरूरी है। क्या बोलते हो आप लोग, है ना, सही कह रहा हूँ मैं? तो चलिए, इसी के साथ साथ अभी रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। दो गानों का मिक्स मैशअप है, मिडल ऑफ द नाइट एंड तेरी दीवानी। ये बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है इसको थोड़ा सा लाउड कर दिया जाएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

कोरोना के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मेरे घर में अगर कुछ भी चीज बाहर से आ जाए, मतलब कि ऑनलाइन अगर मैं कुछ भी ऑर्डर कर दूं, तो फिर उसके बाद मम्मी का एक ही डायलॉग आता है हर बार, आग लग जाए तेरे फोन को, क्योंकि तू रोज रोज कुछ ना कुछ मंगाते रहता है, बस इस लड़के को पैसे उड़ाने से मतलब है और कुछ नहीं समझ आता इसको। आप लोग भी शायद ये सुनते होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड वंडर आप सभी के साथ। एंड मुझे ऐसा लगता है ये ना ऑनलाइन शॉपिंग जो

ऑर्डर एक्सेल किया है बट आता है इमोशनली एक्सेल, मतलब साइज एस भी नहीं होता उसका। हाँ पता नहीं कौन सा एक्सेल होता है उनका यार, मुझे समझ नहीं आता। और दूसरी चीज एक होती है क्वालिटी, भाई क्वालिटी हम लोग कभी भी ऑनलाइन जज कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए शायद हम लोग आज भी NIT वन मार्केट या फिर ओल्ड मार्केट में इतनी भीड़ देखते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ट्राई बिफोर यू बाय। लाइक हम लोग पहनेंगे, पहन के देखेंगे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, फिर उसके बाद हम लोग उसे खरीदेंगे, मानते हो कि नहीं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए फरीदाबाद के एक लड़के का गाना, यानी कि MC Square की आवाज में ये गाना, नहीं बताता क्या आपको फरीदाबाद का ये लड़का, अरे अपने फरीदाबाद का ही है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती की कान फिर से उधार दे। रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

ओ आप लोग, असली प्यार आपको कौन करता है, दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड? अब बिगाड़ कौन रहा है, सुधार कौन रहा है, ये तो आपके ऊपर है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड वन आप सभी के साथ। देखो ये ना एक कंपैरिजन नहीं है, ये लाइफ का डेली कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि गर्लफ्रेंड को लगता है कि अरे तुम तो सारा का सारा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताते रहते हो, घूमने चले जाते हो, इधर चले जाते हो, और गर्लफ्रेंड चाहती क्या है, टाइम, अटेंशन, कमिटमेंट। मगर यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड क्या चाहता है, वो बोलता है बस तू फ्री हो जा और चल भाई निकलते हैं कहीं। और हमारे घर वालों को भी पता है कि जिस दिन इसकी छुट्टी होगी उस दिन एक इंसान आएगा बाइक पे या फिर दो इंसान आएंगे बाइक पे, वो इसको तीसरा पीछे बिठा के ले जाते हैं। काफी बार हम लोग इतना ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, बट अभी ट्रैफिक रूल्स की बात नहीं करेंगे, उसको साइड में रख देते हैं। बात करते हैं गर्लफ्रेंड वर्सेस बेस्ट फ्रेंड की। क्योंकि एक साइड पे होता है बेबी ने थाना थाया, और दूसरी साइड पे होता है भाई चल यार पार्टी करने चल रहे हैं, अरे पैसे नहीं है, कोई नहीं मैं दे दूंगा। और काफी बार ऐसा होता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे टाइप के डायलॉग्स आते हैं। और काफी बार ऐसा भी तो होता है कि गर्लफ्रेंड कहती है तुमने पूरा दिन क्या किया, और बेस्ट फ्रेंड क्या पूछता है, भाई बस आ जा बाकी बाद में बातें कर लेंगे यार क्या हो गया। और ये दोनों हमेशा आपस में झगड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, वो भी हमारे मन के अंदर। क्योंकि देखो आपस में इन दोनों को कौन मिलवाता है, कोई नहीं मिलवाता। और पता क्या, जो गर्लफ्रेंड होती है वो साइलेंट ट्रीटमेंट देती है, और बेस्ट फ्रेंड बस आपको दो चार शब्द बोलेगा और पाँच मिनट बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों से मिलना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग अपने दोस्तों से वो बातें तक शेयर कर पाते हैं जो शायद हम अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर सकते। इमेजिन करो यार कि फ्राइडे नाइट है और आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि कल मेरे साथ शॉपिंग चलना, और फिर उसके बाद बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है कि भाई गोवा चल रहे हैं, मैंने टिकट्स देख लिए, बुक कर रहा हूं और आज रात की ही फ्लाइट है। तब आप क्या करोगे? उस टाइम आपके ना माइंड में बहुत सारी चीजें चलेगी। तो चलिए आप लोग बताइए कि आपने कब अपनी बेस्ट फ्रेंड या फिर अपने पार्टनर के लिए अपने फ्रेंड को इग्नोर किया है, बताइएगा जरूर। नंबर है जी 9654896896। और रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ब्रो, कॉम्प्लिकेटेड तो बेस्ट फ्रेंड्स बना सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: अपना KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

ऑफिस से घर को निकल गए क्या आप लोग? नहीं नहीं गाड़ी में अगर मुझे सुन रहे हो तो क्या ट्रैफिक में फंसे हो गया आप लोग? और फिर गाना गाओ ओ जट डोंट केयर। स्वागत है जी आप सभी का फिर से 9.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। कैसे हो? ट्रैफिक में अगर फंसे हो ना तो यार मुझे पता है कि आपके मन में कितना स्ट्रेस चल रहा होगा। और एक रिपोर्ट ने बताया था कि अगर इंसान दिल्ली एनसीआर में रहता है और 75 साल की अगर उसकी उम्र है तो उसने अपने जीवन काल के पूरे 5 साल ट्रैफिक में फंसा दिए हैं। हाँ सच में ऐसा ही होता है। अब देखो यार ना ये हर वर्किंग आदमी की कहानी है। ऑफिस से घर तक का सफर सबसे पहले क्या चीज़ होती है? ऑफिस का स्ट्रेस। फिर उसके बाद जैसे ही ऑफिस से निकलो चलो अब घर जाएंगे कुछ खाएंगे वहाँ जाके चाय पियेंगे, मगर घर पहुँचते ही पहुंचने से पहले ट्रैफिक का फ्रस्ट्रेशन होता है। और फिर उसके बाद घर पहुंचते ही हम लोगों को नॉर्मल बिहेव करना पड़ता है क्योंकि ऑफिस में कितनी ही ज़्यादा लड़ाई हुई हो किसी बॉस से या फिर किसी और कलीग से, कितनी ही बहस हुई हो, दिन खराब गया हो, मगर फिर भी घर जाके नॉर्मल बिहेव तो करना ही पड़ता है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मतलब आपको सबसे ज़्यादा क्या इरिटेट करता है, आपका बॉस या फिर ट्रैफिक? मुझे लगता है ट्रैफिक ही ज़्यादा इरिटेट करता होगा क्योंकि ट्रैफिक में इधर से हॉर्न पे पे पे पे, फिर कुछ इंसान ऐसे भी दिख जाते हैं जो कि उल्टे रास्ते गाड़ी चला कर आ रहे होते हैं, फिर गुस्सा भी आता है। और क्या होता है हम लोगों के साथ कि ऑफिस में हमेशा यस सर यस सर यस सर बस यही बोलते हैं, और घर पे जी मम्मी जी जी मम्मी जी हाँ मम्मी बोलो मम्मी। असली पर्सनैलिटी तो आदमी सिर्फ और सिर्फ नहाते टाइम दिखाता है, नहाते टाइम जब ठंडे ठंडे पानी से फिर उसके बाद वो निकलती है। और ऐसे ही तो होता है, और गर्मियाँ हो तो ठंडे पानी से, गर्मी हो मतलब सर्दी हो तो ठंडे पानी से, नहीं नहीं उल्टा बोल दिया, सर्दी हो तो गर्म पानी से नहाते हैं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते चाहिए, ठंडा गर्म बाद में देखेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना। I've been drinking more alcohol for the past 5 days.

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

इंडिया में दो चीजें कभी भी नहीं रुक सकती, पहली चीज तो है जी ट्रैफिक, और दूसरी चीज है रिश्तेदारों का एक सवाल कि बेटा शादी कब कर रहे हो। ये हर 20 से 25 से 30 साल तक का इंसान सुनता है, और जिसने अगर 30 में शादी नहीं करी तो उसके बाद भी सुनता है। स्वागत है जी आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। देखो, शादी का जो प्रेशर है ना, वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता, ये एक फुल टाइम बैकग्राउंड म्यूजिक है लाइफ का। जैसे ही आप 25 की उम्र क्रॉस करते हो, घर वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। पहला होता है वर्जन 1, पढ़ाई करो, फिर आता है वर्जन 2, जॉब करो, फिर आता है फाइनली वर्जन 3, अब बेटा शादी कर लो। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं इसमें क्या है कि आप रेडी हो या नहीं, पर सोसाइटी हमेशा रेडी होती है। फिर उसके बाद आता है फैमिली प्रेशर, शर्मा जी के बेटे की हो गई है, तुमसे छोटी लड़की की भी हो गई है, और लगता है शादी को एग्जाम है और सब लोग रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में भी तो ऐसे ही होता था ना, रिजल्ट आते थे फिर बोलते थे उनके बेटे के रिजल्ट देखो, अब बोलते हैं उनके बेटे ने शादी कर ली। अरे ठीक है, अपनी बारी भी आ जाएगी। और काफी बार ऐसा भी होता है ना, रिश्तेदार मिलते हैं, रिश्तेदार वो लोग कहते हैं बेटा अगला नंबर तुम्हारा है, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि उनके उस पर बोलूंगा, पर हमारे संस्कार रोक लेते हमें। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

आपको नहीं लगता इंसान सिर्फ दो ही जगह रहता है, एक तो रियल लाइफ में और एक लास्ट सीन में। सवाल ये है आप जीते कहाँ हो, ज्यादा कहाँ जीते हो। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। मैं बात कर रहा हूँ जी मोबाइल फोन की। हमारा मोबाइल सिर्फ एडिक्शन है, आपको लगता है सिर्फ एडिक्शन ना स्क्रॉलिंग से नहीं होती है, उठते ही फोन, सोने से पहले फोन, बीच में भी फोन। हम लोग बोर्डम से नहीं डरते, हम लोग नो नोटिफिकेशन से डरते हैं। अगर किसी का मैसेज ना आए तो दिक्कत हो जाती है ना। सुबह सुबह क्या रूटीन है हमारा, अलार्म बजता है बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर से बजता है तब जाके उठते हैं, और उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह सुबह भगवान के नाम के बाद में हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं। रील रील रील, बस एक और रील। और आपको नहीं लगता ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती जा रही है? हम रील्स देखते रहते हैं और रील्स देखते देखते इंसान बन चुका है फिलोसोफर, पर लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर पाता। खैर मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि ना मोबाइल फोन आज की डेट में सबका ही एडिक्शन बन चुका है। ये बात आप लोग मानो या फिर मत मानो, हमारी मम्मी जो हम लोगों को बोलती थी कि आग लग जाए तेरे फोन को, आजकल मम्मी भी फोन चलाती हैं और ये सबके घरों में है। क्योंकि इंस्टाग्राम भले ही पेरेंट्स ना चलाते हो मगर फेसबुक पे भी रील आती है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, और फिर वो नेवर एंडिंग चीज है क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एंड रील आएगी कोई। आप लोग स्क्रॉल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे और फिर एक पॉइंट आएगा कि आपको पता चलेगा कि एक घंटा हो गया है। क्योंकि इमेजिन करते हैं 60 सेकंड की एक रील है, यानी कि एक मिनट की एक रील है, आपने अगर 60 रील देख ली तो सीधे सीधे क्या हुआ, एक घंटा आपका निकल गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। और मुझे पता है एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाती है, वो ये है कि फ़ोन की जैसी बैटरी लो होती है उस टाइम हम लोग भागते जाते हैं, चार्जर ढूंढते हैं, चार्जिंग पर फ़ोन लगाते हैं। वो चीज़ क्या है, एंग्जाइटी है। 5% बैटरी हो एकदम से पैनिक मोड ऑन हो जाता है, फ़ोन 5% पे आए तो चार्जर ढूंढते हैं, और खुद 5% एनर्जी पे तो हो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आपकी इस एनर्जी को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और इसके ऊपर और भी बात करेंगे मगर इस गाने के बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
5: ए जय माताजी, माताजी ने हम कहीं ने कहूशु के वा फरे वादल फरे वायरो फरे, पण एक वार बोल्या पछी मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जब से फोन मेरे हाथ में आया है, मेरी मम्मी की सिर्फ एक ही ख्वाब है, मैं कह रहा हूँ मम्मी की सिर्फ एक ही सपना है कि इसके फोन को आग लग जाए। आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे आग लग जाए तेरे फोन को, और अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरे पेरेंट्स शायद खुश होंगे, फिर उसके बाद मेरे को ही सुनाएंगे कि ऐसा क्या कर रहा था तू, फोन में क्या आग लग गई उसमें। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मानो या मत मानो, हमारा फोन जो है ना वो हमारे लिए एडिक्शन बन चुका है। आप अगर एक दिन के लिए भी फोन छोड़ के देख लो, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सच में होगा। और फोन एडिक्टेड नहीं है, एडिक्शन फोन नहीं है, हमारी लत फोन नहीं है, मगर फोन के अंदर जो चीजें हैं वो हमारे लिए लत है, जैसे कि सोशल मीडिया। क्योंकि जब तक सोशल मीडिया मैं चला रहा था ना, तब तक ठीक था, अब सोशल मीडिया मुझे चला रहा है। और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी अब फेसबुक पे आ गए हैं, तो फेसबुक पे वो लोग भी रील्स देखते हैं, और जब रील्स देखने बैठते हैं ना, फिर उसके बाद वो ख़त्म कहाँ होती है। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग मोमेंट्स को जीते थे, आज लोग सबसे पहले कैमरा निकालते हैं। खाना आया, कैमरा निकाला, स्नैप बनाई। आजकल की ये जनरेशन का स्नैप बनाने वाला सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है। और इसके अलावा मतलब एक तो स्नैप बना दी, दूसरी चीज़ है कि हम लोग कहीं पर भी अगर घूमने जाते हैं तब भी ऐसा ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जाएंगे जगह पर, वहाँ पर जाके कैमरे से वीडियो बना लेंगे, अरे कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा व्यू है, वीडियो बना लेते हैं। अरे आप वीडियो बनाइए मगर उस मोमेंट को जी के तो देखिए क्या मज़ा आता है। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, और ये जो गाना है ना इसको भी जी के देखेंगे, मतलब इसको सुनेंगे आराम से। ला रहे ये गाना मनिंदर भुट्टर की आवाज़ में रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: मैं सब

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
1: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं 24 घंटे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बहुत सारे होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। मगर अगर मैंने आप लोगों को वो बोला कि 24 घंटे हैं आपके पास 1 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए, तो क्या आप उसको खर्च कर पाओगे? नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना है ब्रो, खर्च करना है 1 करोड़ रुपए। अब ज़रा सोचो इस चीज़ को, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अगर मुझे कोई दे दे, मतलब सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए कभी, तो फिर मैं सबसे पहले क्या लूँगा? हाँ बिल्कुल, गाड़ी तो लेने ही वाले हम लोग, हो सकता है घर मिले तो घर भी ले लेंगे। वैसे घर एक दिन में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सोच रहे हो बयाना दे देंगे, फिर बयाना देने के बाद कोई इंसान मुकर गया तो फिर क्या करोगे, है ना? कुछ नहीं कर सकते। आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, मतलब वर्ल्ड टूर का टिकट आज ही खरीद लो, पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं कुछ, या फिर एक लग्जरी गाड़ी ली और फिर उसको रेंट पर चढ़ा दिया, क्योंकि फिर ज़िंदगी भर हमारा रेंट भी तो आते रहेगा ना। तो ऐसा मेरी सोच है। मगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या करोगे अगर एक दिन के लिए आपको 1 करोड़ रुपये दे दिए जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ खर्चे के लिए? देखो मैं ना इसमें से कम 1 लाख रुपये खाना खरीदूंगा और सब नीडी लोगों में उठवाऊंगा, ताकि कोई

इंसान इस दुनिया में भूखा ना सोए, भले ही एक दिन के लिए, बट स्टिल मैं ये जरूर करने वाला हूँ। तो ख्याली पुलाव है, बनाते रहते हैं, हम भी बनाएंगे, आप भी बनाइए। और आप लोग सोचिए, अगर आप लोगों को 1 लाख रुपए, 1 लाख नहीं, माफ कीजिए, 1 करोड़ रुपए मिल जाए एक दिन के लिए, तो आप लोग क्या वाले हो? आप एक दिन के CM बन सकते हो क्या? नायक मूवी याद आ गई मुझे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। केसरिया ये गाना ब्रह्मास्त्र मूवी से, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

देखो शाम होती है ना तो फिर मेरे मन में ना ऐसी ऐसी चीजें आती है, जैसे कि अभी मैं स्टूडियो में अकेला हूँ तो अगर मैंने यहाँ म्यूजिक पूरा तरह से बंद कर दिया, मतलब अपने हेडफोन्स का अगर बंद कर दिया तो मुझे कुछ और सुनाई नहीं देगा, फिर उसके बाद मुझे सुनाई देगी वो आवाजें जो सच में है ही नहीं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो मेरे साथ तो ऐसा होता ही है कि मैं घर में अगर अकेला हूं तो फिर मुझे ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देगी जैसे कि कोई दूसरे रूम में चल रहा है, ऑल्दो वहां कोई नहीं होता बट स्टिल मुझे लगता है। और काफी बार ऐसा होता है दुनिया में कुछ ऐसे साउंड रिकॉर्ड होते हैं जिनका सोर्स आज तक मिस्ट्री बना हुआ है, और ये तो रिकॉर्ड हुए हैं। अगर मैं भी अपने घर में रिकॉर्डर लगा दूं शायद कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा। खैर मैं जिन आवाज़ों की बात कर रहा हूं उनमें से एक आपको बताता हूं, एक है समुंदर के अंदर से आने वाली कुछ अजीब आवाज़ें हैं जिनका एग्जैक्ट सोर्स साइंटिस्ट आज भी पता नहीं लगा पाए हैं, या फिर पता लगा लिया बट कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग गूगल पर जब देखोगे ना आप लोगों को भी लगेगा हाँ यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप लोग कभी अकेले में बैठ कर देखना, आप लोगों को ना दो तीन आवाज़ें सुनाई दे जाए ना मेरा नाम बदल देना, मैं सच बता रहा हूँ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है, आई डोंट नो व्हाई। हमारा दिमाग शायद उस टाइम खाली हो जाता है, फिर वो इमेजिनेशन, तो आपको पता है हमारे दिमाग की इतनी अच्छी होती है, फिर वो इमेजिन करने लग जाता है और फिर हम लोगों को आवाज़ें ऐसा लगता है कि सुनाई दे रही है मगर वो सुनाई नहीं दे रही होती, वो हमारा दिमाग जनरेट कर रहा होता है साउंड। अगर अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि एम्बुलेंस की आवाज़ कैसी होती है तो आप लोगों के मन में वो साउंड आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए साउंड से याद आए गाना चला देते हैं, और जो बैकग्राउंड में साउंड बज रहा है इसको थोड़ा अप कर दिया जाए। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हंसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: क्या आपको पता है उत्तराखंड के एक लड़के ने घर बैठे तो नहीं बोलूंगा, मतलब हाँ उत्तराखंड में अपने गांव से पास में ही वहीं पर काम करते हुए रिमोट एरिया में एक फ्लाइंग कार इन्वेंट कर डाली।
1: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज तो H-R-A-96 पर आ जाता है रेडियो का गौरव आरजे गौरव।
0: रेडियो गौरव आप सभी का स्वागत कर रहा है, रेडियो गौरव नहीं माफ कीजिए, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, उत्तराखंड में एक लड़का है जिसका नाम है रवि टमटा। भाई इस लड़के ने उड़ने वाली कार बना दी एक छोटे से शहर में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ये रहता था और यंग इनोवेटर है खुद का। इसने एक फॉर्म खोली हुई है, उसी के अंडर इसने ये काम करना शुरू किया और 12 मिनट में 40 मिनट का सफ़र पूरा हो जाएगा इस उड़ने वाली गाड़ी से। अब बता दो आपको, इसकी कंपनी का नाम है हपीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड और इसने खुद से पूरा एक ड्रोन टाइप का, मतलब ये समझ लो आप एक छोटी सी टैक्सी बना दी, फ्लाइंग कार बोल लो, टैक्सी बोल लो या जो मर्जी बोल लो, कुछ लोग इसे हेलीकॉप्टर कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर नहीं है ये है फ्लाइंग टैक्सी। और इसका एक परीक्षण किया गया था, सफल हो गया जो कि आर्मी हेलीपैड पे। और आपको बता दूं अभी तो फिलहाल ये 40 मिनट की जो दूरी है उसको 12 मिनट में कवर करने का कर सकता है, बट कहा जा रहा है कि आगे अभी इनको सपोर्ट मिलेगा और भी, और फिर ये 2-सीटर बना देंगे इसको, क्योंकि अभी सिर्फ सिंगल सीटर है और फिर उत्तराखंड के रिमोट एरियाज में जाने के लिए ऐसी फ्लाइंग गाड़ियाँ बहुत काम आएगी, क्योंकि उत्तराखंड में आज की डेट में भी गाँव में कोई सड़क नहीं जा रही है। तो इसके बारे में ये भी एक डार्क ट्रूथ है सोसाइटी का। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे एंड उन्हीं गानों में से ये गाना चला रहा हूँ जो कि एक अमेरिकन बंदा इंडिया में आता है और फिर उसके बाद गाना बनाता है करण औजला के साथ और गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। सिमिट्री है इस गाने का नाम। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए एड शीरन एंड करण औजला की

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: कभी भी तो आप बोलना आपको बताइएगा।
1: आपने ये बता दिया तो
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो फिर।

चलो मिलकर याद करते हैं लास्ट वीक के थर्सडे और फ्राइडे को। थर्सडे को बारिश शुरू हुई, बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। मौसम में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था, ह्यूमिडिटी कम हो गई थी, फिर सबको लगा कि ये अब बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद फ्राइडे की सुबह सुबह भी बारिश होती रही, और फिर सुबह होती रही तो फिर वो होती ही रही, और वो चलती चली गई। वो इतनी ज्यादा चल गई कि फरीदाबाद में बहुत सारी जगह पर पानी जमा हो गया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और ना सिर्फ फरीदाबाद में, बाकी जगहों पर भी पानी जमा हुआ था। जी रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ है, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम HR 896। देखो फ्राइडे की बात मैं इसलिए याद करा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि अभी मानसून गया नहीं है, अभी बारिश आगे आने वाले वक्त में भी हो सकती है। तो फ्राइडे की बारिश ने हमें ये तो सिखा दिया कि हाउस अरेस्ट क्या होता है। घर से बाहर निकलना चाहते थे बट निकल नहीं पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश। फिर उसके बाद अगर मैप देख रहे थे ना तो उसमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाल लाल दिखाई दे रहा था, लाल लाल निशान। जहां पर लोगों को 10 से 15 मिनट लगते हैं पहुंचने में, वहां पर लोगों को 1.5 से 2 घंटे लगे थे पहुंचने में। तो बस ये था फरीदाबाद का कुछ हाल, अंडरपास हो गए थे जलमग्न, जैसे कि ओल्ड के अंडरपास में तो ऊपर तक पानी आ गया था। यू वोंट बिलीव, अपना जो सेक्टर 21 साइड है ना, वहाँ पर पूरा एक बस डूब चुकी थी, स्कूल की बस, मिनी बस थी बट डूब चुकी थी। और इसके अलावा हमारे फरीदाबाद में और भी बहुत सारी जगह जहाँ पर, जैसे कि हम लोग बात करें ग्रीन फील्ड का अंडरपास, वहाँ पर भी बहुत सारा पानी जमा हुआ था। और सेक्टर 16 में तो लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया, एंड सेक्टर 21 में भी काफ़ी जगह पर ऐसा ही हाल था। वीडियोज हर जगह से आ रही थी, तो फिर मुझे एक सवाल मन में आया, और वो सवाल ये था कि क्या जल निकासी के ऊपर काम किया गया था या नहीं किया गया था, क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए गए थे कि हाँ इस बार पानी जमा नहीं होगा, इस बार बारिश आएगी तो तुरंत पानी निकल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इस पर आप लोगों की भी कोई ना कोई राय जरूर होगी, तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना डीनो जेम्स की आवाज में सुनिए इस गाने को, मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।

शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि अभी वक्त किस चीज का हो चुका है। वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और सपनों को डीकोड करने के लिए आरजे गौरव इन द हाउस। एंड सपनों की जब भी बात आती है तो देखो काफी सारे डिफरेंट सपने आते हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि बारिश के ऊपर क्यों ना बात की जाए, क्योंकि हम लोगों के मन में सपने में ऐसा काफी बार होता है कि बारिश आ रही होती है। तो एक ना बुक होती है जैसे कहते हैं ड्रीम साइंस, स्वप्न शास्त्र जैसे बोले, तो उसमें साफ लिखा रहता है कि पॉजिटिव साइंस

तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है। बट यहाँ पर जहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ पर नेगेटिव भी होगा। अब सोचो तूफान के साथ अगर बारिश आ रही है तो क्या होगा, तो मतलब किसी आने वाली परेशानी का संकेत हो सकता है, यानी कि स्ट्रेस भी आ सकता है आप लोगों को। एंड अगर आप बारिश से छुप रहे हैं सपने में, तो हो सकता है आप रियल लाइफ में भी किसी प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हैं, उनको फेस करने का वक्त आ चुका है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर सभी से कि जब भी खराब रोड आती है तो क्या हम लोग अपनी बाइक छोड़ के भाग जाते हैं? नहीं ना, हम लोग अपनी ग्रिप और टाइट कर लेते हैं। हम लोग जब साइकिल चलाते गड्ढे आते तो हम लोग ग्रिप और टाइट कर लेते हैं। तो समझ लो ये लाइफ के वही गड्ढे हैं, अभी ग्रिप टाइट करके रखनी है हमें और फिर आगे स्मूथ रोड भी आ जाएगी। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, ऐसे ही और भी ढेरों बातें होती रहेंगी, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना HR 896।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: Oh, so-

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

यो गाइस, जिम ब्रो इज बैक अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर। आपको पता है क्या, हम लोग जब भी जिम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ गलती करते हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, और उसको कहते हैं नेगेटिव फेज। हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते, हम लोग वजन पर कंट्रोल करते ही नहीं है। अब देखो नेगेटिवली क्या होता है, जब आप वेट को नीचे लाते हो ना उल्टा वापस, मान लेते हैं आप डंबल कर्ल कर रहे हैं जिसमें आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जैसे ही आपने डंबल ऊपर लेकर आए और वापस नीचे ले गए, तो उसको स्लो और कंट्रोल वे में नहीं ले जाते। अब स्लो और कंट्रोल वे में ले जाने से होता क्या है, मसल ग्रोथ होती है। वजन उठाते वक्त पॉजिटिव फेज है, और उसी टाइम जब आप नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो क्या होता है, नेगेटिव फेज होता है, जिसमें आपके मसल फाइबर्स टूटते हैं हल्का हल्का, और फिर उसको रिपेयर करने के लिए टाइम भी मिल जाता है। और हाँ, टाइम अंडर टेंशन, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हर रैप को नीचे लाते वक्त कभी कभार 3 सेकंड के लिए रोकने की कोशिश कीजिए, उससे मसल पर ज़्यादा प्रेशर बनेगा। और कंट्रोल रखकर आप लोग हमेशा वेट उठाइए, कभी भी ग्रेविटी के भरोसे मत छोड़ना कुछ भी चीज़ को। और हाँ, एक और चीज़, इन सबसे फ़ायदा क्या होता है, इन सबसे फ़ायदा होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपकी ताकत बढ़ती जा रही है, इंजरी के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इंजरी बिल्कुल, झटका लगने से इंजरी होती है, आप सभी को पता है, तो इस बार झटका भी लगेगा ना तो भी आपके जॉइंट्स सेफ रहेंगे और मसल्स और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, यानी कि बेटर शेप आ जाती है, मसल्स जल्दी टोन होती है। तो इसके बारे में ज़रा सोचिए और बताइए आपको ये जिम ब्रो की टिप कैसी लगी। रोज आता हूँ शाम को जिम ब्रो की टिप लेकर आता हूँ, और मैं आज अभी आपका जिम ब्रो लेता है आप सभी से इजाजत। नहीं, वापस आ रहा हूँ, गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। 2020 का बोलूँ या 2021 का बोलूँ, द मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग ब्राउन मुंडे, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुने

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

हम सभी लोगों के घर के आसपास कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो रोज आकर कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालेगा, बट हमारे घर के आसपास आकर डालकर चले जाएगा। या फिर हो सकता है हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा इंसान हो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। तो आपकी लाइफ में भी होगा, आपके घर के आसपास भी होगा, हो सकता है आपके सोसाइटी में हो सकता है आप वो खुद हो जो घर पे जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तब कूड़ा नहीं देते, बट हम लोग सड़क के किनारे जाके फेंकाते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ऐसी हरकतें बंद कर दीजिए, और इससे कूड़ा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो वैसे तो वक्त हो चुका मेरा यहाँ से जाने का, बट जाने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अपने फरीदाबाद का ध्यान रखिए, यह आपका ही शहर है, हमारा ही शहर है, और इसको और भी ज़्यादा स्वच्छ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है कि नहीं, मानते हो ना इस चीज़ को? तो स्वच्छ रखिए फरीदाबाद को, जितना स्वच्छ रहेगा फरीदाबाद उतना ही स्वस्थ रहेगा फरीदाबाद। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा यहाँ पे कि ये तो सरकार का काम है, हम क्यों करें? मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग कूड़ा उठाइए, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कूड़े को हर जगह मत फैलाइए। बस एक छोटा सा चेंज आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, और अगर आप लोग वो चेंज अपनी लाइफ में ले आए तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सुधरने लग जाएगी। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे कल शाम फिर से 5 से 8। आज तो मंडे ही है, कल ट्यूसडे है, फिर वेंसडे, फिर ऐसे करके हफ्ता बीतेगा, फिर 15 अगस्त की छुट्टियां आएगी। तो चलिए इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, इजाजत मिलती है तो हम निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वापस आएगी गीत विदेशियाँ, प्यार भरी बातें, प्यार भरे गाने, प्यार भरे रंग में रहेगा आप सभी के लिए। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना बाय बाय सायोनारा, दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप आपको बताइएगा।
1: आप नहीं बता दे तो?
2: नहीं, क्यों?

0: रात थोड़ी और गहरी हो चली है और शायद इस वक्त दिन भर की भागदौड़ के बाद हम सबके पास अपने दिल की आवाज सुनने का थोड़ा सा वक्त है। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी और ये है इश्क बाजियां, जहां हम मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि उसे अल्फाज भी देते हैं। और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, और इश्क बाजियां का ये वो हिस्सा है जहां हम इश्क और शायरों की बात करते हैं, यानी कि इश्क शायराना। कभी किसी शायर के लफ्जों में हमें अपना कोई पुराना रिश्ता मिल जाता है, कभी कोई अधूरी बातचीत, कभी किसी का इंतजार, और कभी वो सवाल जो हमने सामने वालों से कभी पूछा ही नहीं। आज की रात एक ऐसे ही शायर के नाम है दाग दहलवी साहब। दाग की सबसे खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने इश्क को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। उनकी शायरी में मोहब्बत है मगर उसके साथ नखरा भी है, शिकायत भी है और थोड़ी सी शरारत भी है। उनके शब्दों में मोहब्बत कोई दूर की चीज नहीं लगती बल्कि बिल्कुल हमारी जिंदगी जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सामने बैठकर कह रहा हो, अच्छा तो तुम नाराज हो, चलो पहले ये बताओ नाराज क्यों हो। शायद इसीलिए दाग की शायरी आज भी इतनी अपनी सी लगती है, क्योंकि उन्होंने इश्क को आसमान पर नहीं रखा बल्कि हम इंसानों के बीच रखा है। और अब कुछ ऐसे अल्फाज जिनमें आपको शायद अपनी कोई पुरानी कहानी, कोई पुराना खत या कोई ऐसा नाम मिल जाए जिसे आपने बहुत पहले भुलाने की कोशिश की थी। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्कबाजिया में, आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात की इस खूबसूरत महफिल में इश्कबाजिया के साथ, और ये है हमारा खास सेगमेंट इश्क शायराना। हमने बात की है दाग दहलवी साहब के बारे में, उनके अंदाज, उनके इश्क के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए दाग आज भी याद किए जाते हैं, उनके अल्फाज। कभी आपने नोटिस किया है, किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम एक्चुअली तब शुरू नहीं होती जब वो आपसे दूर होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपको उसकी क्लोजनेस में किसी और की प्रेजेंस महसूस होने लगे। एक नया नाम, एक नया जिक्र, एक बदला हुआ अंदाज, और फिर दिमाग कहता है शायद कुछ नहीं है, लेकिन दिल कहता है नहीं कुछ तो है। और दाग दहलवी ने इसी कुछ तो है वाली बेचैनी को कितने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा है। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। सोचिए, सिर्फ एक खत में आया हुआ एक नया नाम और पूरी मोहब्बत के कॉन्फिडेंस पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब आप बताइए कि आपने कभी किसी के मैसेज में कोई छोटी सी बात नोटिस करके पूरी कहानी अपने दिमाग में बना ली है? कभी ऑनलाइन दिखने पर, कभी किसी की फोटो में किसी का नाम देखकर, या कभी बस इस वजह से कि आज तुम पहले जैसे बात नहीं कर रहे। लव इज स्ट्रेंज, राइट? कभी कोई बड़ी बात नहीं होती, बस टोन बदलती है और हमें तब समझ आता है। दाग का अगला शेर है कि वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। यानी दर्द भी उसी ने दिया और फिर बड़े मासूम बनकर पूछ रहे हैं किसने दिल दुखाया है। वाह दाग साहब, और ऑनेस्टली ये सिचुएशन आज भी कितनी रिलेटेबल है ना। तो अगर आपको किसी के बिहेवियर में कुछ तो बदला है वाली फीलिंग आए तो शायद दाग को पढ़िएगा, हो सकता है आपके अपने सवाल का जवाब आपको मिल जाए। लेकिन अपने सवाल के लिए सही अल्फाज जरूर मिलेंगे आपको। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, और ये है इश्क बाजियां। स्टे विद मी, क्योंकि दाग की कहानी अभी बाकी है।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां में आपके साथ हूँ। इश्क वाली गीत बात चल रही है दाग दहलवी साहब के बारे में। और कभी कभी ना रिलेशनशिप में कोई बड़ी फाइट नहीं होती है, ना कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप होता है, बस एफर्ट्स कम होने लगते हैं। पहले जो इंसान खुद मैसेज करता था, अब आपके मैसेज का रिप्लाई भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता है। पहले जैसे आपकी छोटी छोटी बातें याद रहती थीं, अब उसे आपकी बड़ी बड़ी बातें भी याद नहीं रहती हैं। और आप पूछते भी नहीं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं जवाब वो ना मिल जाए जिसका डर आपको पहले से है। हैव यू एवर बीन देयर, जहां रिश्ता टेक्निकली खत्म नहीं हुआ लेकिन दिल को लगने लगा कुछ तो खत्म हो गया है। दाग दहलवी की यही तो खूबसूरती है, उन्होंने इश्क के सिर्फ खूबसूरत हिस्से नहीं लिखे बल्कि उस प्यार को भी लिखा है जिसमें शक है, शिकायत है, उम्मीद है और टूटने का डर भी है। उनकी गजलों में प्यार है, जिंदगी बहुत सहज है, प्लेफुल है, लेकिन इमोशंस जो है वो दिखाई देते हैं। और इसी गजल में एक जगह वो कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है ये कलाम किसका था। सोचिए, प्रॉमिसेस याद है वो कि मैं हमेशा साथ रहूंगा, याद है वो कुछ भी हो जाए हम साथ हैं, याद है। क्योंकि रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सामने वाला बदल गया है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसके पुराने वर्जन को छोड़ नहीं पाते हैं। हम आज के इंसान से बात कर रहे होते हैं लेकिन उम्मीद कल वाले इंसान से लगाए हुए बैठे होते हैं। और शायद यही वजह है कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं। लोग चले जाते हैं लेकिन उनके कहे हुए शब्द हमारे अंदर रह जाते हैं। कभी किसी का एक मैं होना सालों तक याद रहता है, और कभी किसी का एक अब पहले जैसा कुछ नहीं है पूरी कहानी बदल देता है। तो अगर आज रात आपके दिल में कोई भी ऐसी अनफिनिश्ड कॉन्वर्जेशन है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है या बस मन हल्का करना है, यू कैन टॉक टू मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर RJGeet01 पर DM कर सकते हैं, आप रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नाम बताना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस अपने दिल की बात बोल देना ही इनफ होता है। बिकॉज सम फीलिंग डोंट नीड अ सोल्यूशन, दे जस्ट नीड अ लिसनर। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रही हैं इश्क बाजियां। स्टे विद मी, रात अभी बाकी है और दाग के अल्फाज में छुपी और कुछ मोहब्बत की बातें बाकी हैं।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छट के शो है इश्कबाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। कुछ रिश्ते ना ऑफिशियली कभी खत्म नहीं होते हैं, बस उनकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। पहले घंटों बातें होती थी, अब बस टेक केयर पर कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। पहले एक दूसरे की खामोशी समझ आ जाती थी, अब बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मुझे बुरा क्यों लगा। और शायद सबसे मुश्किल चीज यही है जब आपको प्यार तो अब भी उतना ही हो लेकिन सामने वाला आपको उतनी जगह देना बंद करते। दर्द दलवी साहब की बातों में इश्क का ये रंग बार बार दिखाई देता है।

लव, शिकायत और वो हल्की सी प्लेफुल टीजिंग जो दर्द को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। उनका एक शेर है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। जरा इस बात को आज के रिश्तों से जोड़ कर देखिए। आज हम लोगों से कनेक्ट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक स्वाइप, एक फॉलो, एक DM, लेकिन जेन्युइनली कनेक्ट होना वह आज भी उतना मुश्किल है। किसी का आपकी लाइफ में होना और किसी का आपकी लाइफ को समझना दोनों बहुत अलग बातें हैं। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके सामने आपको अपनी फीलिंग एडिट ना करनी पड़े, जहां आपको हर बार स्ट्रांग बनने का ड्रामा ना करना पड़े, जहां आप बस अपने जैसे रह सकें, क्योंकि दाग साहब यही कहते हैं, चाहने वाला हर कोई नहीं होता और जो सच में दिल से चाहे वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आज की रात एक छोटा सा सवाल आपके लिए, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने कभी प्रॉपरली थैंक यू नहीं कहा? कोई पुराना प्यार, कोई दोस्त, या शायद वो इंसान जिसने आपके सबसे डिफिकल्ट फेज में बस इतना कहा था, आई एम हियर। अगर है तो आज उसे मैसेज कीजिए, क्योंकि समटाइम्स पीपल डोंट नीड अ बिग कन्फेशन, दे जस्ट नीड टू नो दैट दे स्टिल मैटर। और अगर कोई ऐसी बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे, कोई रिलेशनशिप कन्फ्यूजन है, कोई अधूरी कहानी है, कोई सवाल है जो दिल में अटका हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आरजे गीत 01 के नाम से मैं मिल जाती हूँ, या रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी बात को भेज सकते हैं, नाम बताना जरूरी नहीं है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। तो दाग साहब के साथ आज की रात यहीं खत्म होती है, बट रिमेम्बर, सम स्टोरीज एंड सम पीपल लीव, बट ब्यूटीफुल वर्ड्स दे स्टे। सो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी रेट्रो इश्क लेकर।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं। हेलो सर, हेलो सर, आपका अकाउंट खतरे में है सर। हेलो सर, हेलो सर, पहले डराए फिर

Halo, sir.

कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

मैं डॉक्टर ईशा वधावन हूँ, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मैं फोर्टिस फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन, तो हम लोगों की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बहुत लंबी होती है, बट देर आर ओनली सो मेनी डेज इन अ वीक या फिर सो मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट हम मदर्स, जब कोई भी लेडी मदर बनती है, ट्रूली ब्रेन में स्टडीज हुई हैं कि चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, एक्स्ट्रा लेवल की कंपैशन वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी बार इग्नोर कर देती हैं, बाकी सबको हेल्प करते करते। इग्नोर करने में इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। बट बहुत सिंपल और वैलिड पॉइंट ये है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब आप अपना कप भरेंगी पॉजिटिव थिंग्स से तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी करेंगी। अगर आप इतनी फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं कि आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप कुछ हेल्प बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगी अल्टीमेटली।

एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहां शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह होना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं आजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

लव ट्रायंगल अब थिएटर से निकलकर आपके ओटीटी स्क्रीन पर उतरने वाला है। कोकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना यानी तीन लोग एक रिलेशनशिप और प्रॉब्लम इतनी कि शायद थेरेपिस्ट भी बोले भाई मुझे इन्वॉल्व मत करो। अब फिल्म अब अगस्त में ओटीटी पर रिलीज हो रही है। जिन लोगों ने थिएटर में इस लव ट्रायंगल को मिस कर दिया था, अब उनके लिए रिमोट ही आपका टिकट काउंटर है। और सबसे मजेदार बात, आजकल रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो ना हो, बॉलीवुड को लव ट्रायंगल पर अभी भी भरोसा है। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि कोकटेल 2 अब आपके स्क्रीन पर रिलेशनशिप की नई सर्विंग लेकर आने वाला है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई

दिनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं, आंखों से शुरू होती हैं। और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लव्स कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चार्लेट की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलसे भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: करो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

Venons, please.

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद बढ़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर श्वेता मेंदीरत्ता। मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक, यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी पर। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है, जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का, वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन, बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है, तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट खिलाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

0: बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है। कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।
1: 89.6 रेडियो महारानी। कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें

कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा न छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो हो ना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलु कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते, ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का यह अवसर मिला, हम काम क्रोधाद से युक्त हो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है, वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंदमय है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है, यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत, हरिपार्षद वैष्णव जनों के दर्शन, यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं,
जो नाम धाम रूप